0: श्री बेटल चेन्नई भी जाएंगे और आईआईटी मद्रास के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड एनबीईएमएस ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीतापुरा स्थित आयन डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर नीट पीजी की पुनर्परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार जयपुर के 5 केंद्रों पर परीक्षा सुचारू तरीके से संपन्न हुई। पिछले महीने की 30 तारीख को जयपुर के परीक्षा केंद्रों में बिजली की समस्या के कारण 2,445 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितंबर को होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। महिला क्रिकेट में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए 2020 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर 57 रन बनाए और आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चंडी ने 7 रन देकर 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने की संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड में ऐसी स्थिति बने रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, "Today Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world?" The Prime Minister was addressing centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce at Delhi University yesterday evening. Mr. Modi said, "India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength." He said, "India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism." He said, "The world is watching India become the fastest growing major economy."
2: Duniya Bharat ko fragile 5 bata rahi thi. आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने से हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
1: Presenting hard economic data to counter persistent critics, the Prime Minister detailed that between April and June, electricity production increased by 9%. Mr. Modi said overall vehicle sales surged by over 20% during the period, driven by 20% growth in two-wheelers and nearly 30% in three-wheelers. He stressed that an 8% increase in steel and cement consumption proves that construction, housing and commercial activity are expanding rapidly. Mr. Modi shared that smartphone exports now exceed 2.5 lakh crore rupees, while domestic defense production has hit an all-time

0: మీరింతవరకు శ్రీ పురుషోత్తం చౌదరి గారు రచించిన క్రైస్తవ భక్తిగీతాలు విన్నారు. ఇంతటితో ఈనాటి స్తుతిమాల కార్యక్రమం సమాప్తం. స్తుతిమాల కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్ర సమర్పణ. ఆకాశవాణి సమయం 8 గంటలకు వస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో సమాచార ప్రభాత, అనంతరం మార్నింగ్ న్యూస్. ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సే సమాచార్ ప్రభాత్ కే సాత్ మే జాగృతి శర్మ. दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील. भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर के हों. भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया. एनआईए की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया. नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को पहले आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे. भारत ने दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर के हों. कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि आज भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं.
2: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं. अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों

0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो उसकी आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है और दुनिया देख रही है कि भारत सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन में 9% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान वाहनों की बिक्री 20% से अधिक बढ़ी है। उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन का निर्यात अब 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है और घरेलू रक्षा उत्पादन लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे।
1: मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा, आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा, भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह आज गृह मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे।
2: अमित शाह का आज का दौरा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से जुड़ा है। गृह मंत्रालय की बैठक में गोवा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बाद में बीजेपी के नए राज्य कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन किया जाएगा। दिन के अंत में पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक भी होगी। कल अमित शाह पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान लेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
3: जो निर्देश होगा जो भी प्रधानमंत्री जी का वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की ये सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण, जल तथा कृषि उपमंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। वे सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। ये आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समानांतर होगा। सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य

0: देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग भरोसेमंद बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। एक रिपोर्ट।
1: संप्रभु धन कोष, पेंशन कोष और परिवार कार्यालय कुल मिलाकर $1 ट्रिलियन मूल्य की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमेरिकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने दो महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितम्बर को होगा। दिल्ली में नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली पुलिस की अपराध नियंत्रण शाखा ऐसी आपराधिक गतिविधियों की पहचान के लिए लगातार निगरानी कर रही है, जिससे गलत लेबल वाली और नकली दवाओं के निर्माण और वितरण को रोका जा सके।
2: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। इसी लगातार निगरानी और कार्रवाई के तहत दिल्ली अपराध शाखा ने इस साल अप्रैल में दिल्ली में बिना लाइसेंस वाली जगह से गलत लेबल वाली और खराब गुणवत्ता की रेबीज वैक्सीन जब्त की थी। पिछले महीने की 27 तारीख को एक सूचना के जरिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सभी राज्यों के ड्रग्स कंट्रोलर से कहा कि वे अपने इंस्पेक्टर स्टाफ को अलर्ट करें और दवा के गलत लेबल वाले बैच की आवाजाही, वितरण और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखें। DCGI ने यह भी पुष्टि की है कि संबंधित बैच का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश में निर्यात नहीं किया गया था। अस्पतालों, क्लिनिकों और सरकारी हेल्थ केयर सेंटरों में दी जाने वाली वैक्सीन सिर्फ लाइसेंस वाली फार्मेसियों के जरिए ही दी जाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र के मेलाघाट और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के पुनर्वास मामले में देश के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं। इन केंद्रों में गिद्धों को पाला गया और उनके जीवित रहने की दर उत्साहजनक रही है। एक रिपोर्ट।
3: बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के अनुसार दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच दोनों अभयारण्यों में कुल 29 गिद्ध छोड़े गए थे। BNHS ने कहा है कि यह सफलता दर्शाती है कि गिद्धों को पर्याप्त शिकार और कम मानवीय हस्तक्षेप वाले बाघ अभयारण्यों में छोड़ना एक प्रभावी तरीका साबित हो सकता है। ये परिणाम देश में घटती गिद्ध आबादी के संरक्षण और पुनर्स्थापना के प्रयासों को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हैं। प्रार्थना के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से गिरिडीह के मर्सी अस्पताल में निधन हो गया है। देर रात तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रात करीब 2 बजे अस्पताल लाया गया, जहां सुबह करीब 4 बजे उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन को अपनी व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन झारखंड की अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई को समर्पित कर दिया। ईरान की नौसेना ने होर्मुज जल डबरू मध्य से गुजर रहे 3 तेल टैंकरों और अमरीका से जुड़े 3 जहाजों पर हमले का दावा किया है। इससे पहले अमरीका ने फारस की खाड़ी और ओमान सागर में 3 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया था। महिला क्रिकेट में दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर और एक गेंद में महज 55 रन बनाकर आउट हो गई। ये T20 में उसका अब तक का सबसे कम स्कोर है। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से स्पिनर श्रीचरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 जबकि दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट हासिल किए। ये मैच हरमनप्रीत का बतौर कप्तान 150वां T20 मैच था। वे पुरुष या महिला क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कप्तान हैं। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका मुकाबला आज चीन के हेजीटिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से

0: प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज में दिए गए वक्तव्य को प्रमुखता दी है। युवा ही विकसित भारत बनाएंगे, मुझे पूरा भरोसा। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री की युवाओं को सलाह को सुर्खी बनाया है, बड़े सपने देखें और पूरा करने में जान लगा दें। जनसत्ता ने खतरा शीर्षक से IIT मंडी के शोध को प्रकाशित किया है। हिमाचल में आकार में तेजी से बढ़ रही 9 हिमनद झीलों की पहचान हुई। एक दशक में हिमालय क्षेत्र में हिमनद झीलें करीब 30% बढ़ी। 457 साल बाद बदलेगा दुनिया का नक्शा, लिखता है राजस्थान पत्रिका। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित, भारत सहित 164 देशों का इक्वल अर्थ मानचित्र के पक्ष में वोट। वर्ष 1569 में बने मर्केटर प्रोजेक्शन की जगह वर्ष 2018 के इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अमर उजाला ने न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को प्रमुखता दी है। 1200 बेकाबू AI एजेंट्स ने इंटरनेट पर बना ली खुद की सरकार। पकड़े जाने के डर से मिटाए सबूत, ओपन AI और एंथ्रोपिक ने रोकी सबसे ताकतवर मॉडल की ट्रेनिंग। नवभारत टाइम्स ने परवरिश पृष्ठ पर AI की बढ़ती दखलंदाजी को प्रमुखता दी है। पेरेंट्स की जगह तो नहीं ले रहा AI, मम्मी पापा नहीं समझ पा रहे बच्चों को चैटबॉट से क्या हो रहे हैं नुकसान। पत्र ने बचाने के रास्ते भी दिए हैं। चैट हिस्ट्री जरूर देखें, अपना ज्यादा से ज्यादा समय दें, AI को दोस्त बनने से रोकें और हर जवाब तुरंत मत लेने दें।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर की हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। NIA की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आए ब्रिक्स सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। और क्रिकेट में भारत ने दुबई में महिला T20 एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses centenary celebrations of Shriram College of Commerce at Delhi University, calls upon young Indians to build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. BJP Rajya Sabha MP Dinesh Sharma appointed Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands. NIA Special Court convicts 10 Maoists in 2013 Chhattisgarh Jhiram Valley Massacre case. IBRICS Summit to be held in New Delhi on the sidelines of BRICS Summit on the 12th and 13th of this month. Over 500 institutional investors, finance ministers and business leaders to participate in the two-day event. And in cricket, India beat Pakistan by 7 wickets in the Women's T20 Asia Cup match in Dubai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, today Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world? Prime Minister was addressing the centenary celebrations of Shriram College of Commerce, SRCC, at Delhi University yesterday evening.
4: दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
3: Mr. Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said

0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం సమయం 12 గంటలు. ఇప్పుడు హిందీలో అనంతరం ఆంగ్లంలో వార్తలు వింటారు. ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాత్ మే నిఖిల్ కుమార్. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर की हों. वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं.
2: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं. अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
1: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो इसकी बढ़ती आर्थिक क्षमताओं को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है.
2: दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही. 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है. और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है.
1: गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे. वे गृह मंत्रालय की बैठक का नेतृत्व करेंगे और भारतीय जनता

0: पार्टी के नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। गृहमंत्री 3 दिन के दौरे पर कल गोवा पहुंचे। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया है। इनकी सजा पर अंतिम फैसला 16 सितंबर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया गया था। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या 1344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण का सहारा भी लिया जा रहा है। चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई है। तूफान सॉडेल से कई दिनों की मूसलाधार बारिश के कारण ये आपदा हुई है। मिस्र की एक अदालत ने टीवी एंकर सारा खलीफा समेत 12 लोगों को ड्रग्स तस्करी के मामले में मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने माना कि आरोपी एक आपराधिक गिरोह चला रहे थे जो मादक पदार्थों के निर्माण और बिक्री के लिए कच्चा माल आयात करता था। आरोपियों के पास अवैध हथियार होने की भी बात सामने आई है। सारा खलीफा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए कार्य करना है। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न होगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। विश्व की 5वें नंबर की जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरियन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। उधर दुबई में 2020 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 55 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने 8 ओवर और 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय लालिमा अनेजा डैंग। Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, "Today Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world?" Prime Minister was addressing centenary celebrations of Shriram College of Commerce, SRCC, at the Delhi University yesterday evening.
2: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
1: Mr. Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism.

0: आकाशवाणी का ये हैदराबाद केंद्र है। मीडियम वेव 406.5 मीटर्स अर्थात 738 किलोहर्ट्स और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रस्तुत है आज का हिंदी कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के उपलक्ष्य में आइए सुनते हैं पोषण विशेषज्ञ श्रीमती सौम्य कलूरी से भेंट वार्ता। इनसे बातचीत कर रही हैं कृष्णा कुमारी। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते हैं, हर साल 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है हमें ये याद दिलाना कि सही खानपान ही एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की असली चाबी है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या हम वाकई अपनी थाली पर ध्यान दे पा रहे हैं? इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए जाने माने पोषण विशेषज्ञ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, श्रीमती सौम्य कलूरी, डाइटिशियन। सौम्य जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए, आकाशवाणी को मेरी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सौम्य जी, चर्चा की शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। हर साल मनाए जाने वाले इस राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का मूल संदेश क्या है और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता क्यों बढ़ गई है?
1: नेशनल न्यूट्रिशन मंथ एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे हमारे देश में मुख्य तरीका से माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये माल न्यूट्रिशन जहाँ पे हर सोसाइटी में फैली हुई है, एक ऊंची सोसाइटी रहने दीजिए, जनरल पब्लिक रहने दीजिए, या नहीं तो आंगनवाड़ी सेंटर की स्थाई में भी रहने दीजिए, ये माल न्यूट्रिशन बहुत बड़ी समस्या हो रही है। तो इसीलिए ये पोषण माह का प्रोग्राम या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ का कैंपेन शुरू हुआ है। तो इसमें क्या होता है, ये एक हफ्ता जो हम भागदौड़ करके बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं या

0: ज्ञान देने की कोशिश करते हैं अलग अलग तरीकों से, जैसे अपना ही प्रोग्राम रहने दीजिए या टीवी की प्रोग्राम रहने दीजिए, या नहीं तो स्कूल कॉलेजेस में छोटे छोटे एक्टिविटीज करने दे, एक साल भर के लिए थोड़ा सा और उसमें विशेष ज्ञान पाने के लिए और अपनी जो खाने पीने में हम ध्यान देने के लिए हेल्प करने के लिए एक अच्छी मौका है।
1: जी सौम्या जी, अक्सर संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट की बात सुनते ही एक आम आदमी की भाषा में कहे तो एक आदर्श भारतीय थाली कैसी दिखनी चाहिए?
0: ऐसा देखा गया तो इंडियन प्लेट या अपनी भारतीय थाली जो होती है बैलेंस्ड मील कहा जाता है, पर उसमें क्या हो जाता है जहाँ पे जैसे जैसे हमारी जीवन शैली बदल रहा है वैसे ही थाली में भी वही सेम खाने पीने की चीजें रहना जरूरी है, पर वहां पे थोड़ा बहुत जो ज्यादा लेना जो कम लेना उसकी मायना जो है बदल रहा है।
1: जी
0: जैसे पहले हम हमारे थाली में क्या है खाना या अनाज हमारा मेन आहार रहता था, पर अभी हमारे लाइफस्टाइल के हिसाब से देखा गया तो हम उसको ही कम करना चाहिए और उसके बदले में जो प्रोटीन रहती है उसको बढ़ाना चाहिए और उसके साथ साथ जो सब्जियां और दूध दही के चीजें होते हैं उन चीजों को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा काम पूरा बैठ के करने का काम ज्यादा हो गया है और मेहनत करने का काम कम हो गया है, तो इसी वजह से हम ज्यादा तक आजकल मोटापा देख रहे हैं, डायबिटीज देख रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये सब चीजें सिर्फ हमारे खान पीन से ही रिलेटेड हो जाते हैं। तो इसीलिए जैसे जैसे हमारा काम अलग हो जाता है पहले के जैसे चीजें खा सकते हैं, पर जो चीजें खा रहे उन चीजों को कौन सी क्वांटिटी में लेना ये चीजों को बदलना जरूरी हो जाता है।
1: जी सौम्या जी, आजकल प्रोटीन को लेकर बहुत चर्चा करते हैं लोग, सीधे सप्लीमेंट की तरफ भागते हैं, क्या हमारी पारंपरिक भारतीय थाली प्रोटीन की जरूरी पूरी करने के लिए काफी नहीं है?
0: एक बहुत अच्छी सवाल है, क्योंकि जहाँ पे हम प्रोटीन के बारे में बात करते हैं हमारे भारतीय थाली में देखा गया तो प्रोटीन रहता है, पर हम कितना खाते हैं वो मायने रखता है। जैसे रोज दाल खाते हैं पर कितना दाल खाते हैं, कोई एक चम्मच ही खाते हैं, कोई एक कटोरी खाते हैं, कोई कभी खाते भी नहीं है क्योंकि गैस एसिडिटी ऐसी समस्याओं से जो हम लड़ रहे हैं उसके वजह से नहीं खा सकते हैं या खाना कम कर देते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है एक वेजिटेरियन को प्रोटीन की कमी शुरू हो जाती है। और जो नॉनवेज खाते हैं उनमें क्या है हर रोज नहीं खा सकते हैं, नहीं खाएंगे बहुत सारे लोग, और जो लोग खाते हैं वो लोग शायद बहुत कम क्वांटिटी खा लेते हैं। देखा गया तो एक आदमी को जैसे 50 किलो की आदमी को या औरत को 50 ग्राम की प्रोटीन लेना जरूरी है। अगर हम हमारे भारतीय वासियों को देखा गया तो बहुत सारे लोगों की प्रोटीन क्वांटिटी जो है 30-35 ग्राम से ज्यादा नहीं होता है।
1: जी
0: तो इसीलिए प्रोटीन की कमी ज्यादा देखते हैं, उसके वजह से मसल की कमी ज्यादा होता है और बहुत यंग एज में बहुत सारे डिजीजेस आने की यानी तो स्ट्रेंथ नहीं रहने की प्रॉब्लम ज्यादा देखते हैं, स्पेशली विमेन में या बच्चों में।
1: जी सौम्या जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। भारत में महिलाओं और बच्चों में एनीमिया यानी खून की कमी बहुत आम समस्या है, खान पान में ऐसा क्या शामिल करें जिससे इसे आसानी से दूर किया जा सके?
0: एनीमिया एक ऐसी समस्या है जो हम हमारी पूरी भारत देश में बहुत ज्यादा है, मुख्य तरीके से जैसे आपने कहा फीमेल्स 13 इयर्स से लेके 60 साल तक फीमेल्स में हम बहुत ज्यादा देखते हैं। तो आजकल देखा गया तो फेरिटिन लेवल्स आयरन लेवल्स भी कम हो गया है, तो वो हमारे खाने पीने में जो बदलाव आया उस चीज के वजह से हो सकता है, और हम जैसे तरीका से खाते हैं जैसे ज्यादा पकाने से या नहीं तो कोई कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है उसके वजह से भी शरीर में आयरन की कमी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो सिंपल से चीजें रहते हैं जैसे कॉम्बिनेशंस, जैसे खाना खाने के बाद तुरंत बाद हम लोग चाय पीने की आदत होती है उसको बंद करना पड़ेगा जिनको भी एनीमिया है, या नहीं तो अपने हरी सब्जियां जो होती हैं उन चीजों को थोड़ा हफ्ते में 3-4 बार लेने की, और जैसे लाल रंग के या ऑरेंज कलर के जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं उनको कुछ ज्यादा क्वांटिटी हमारे खाने पीने में इस्तेमाल करना, सीजनल फ्रूट्स में भी हमको विटामिन सी ज्यादा मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और विटामिन सी खाने के साथ जब हम लेंगे उसमें आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है।
1: जी।
0: तो इसीलिए जैसे नींबू है खाने में थोड़ा रेगुलर

0: डाल सकते हैं, या नहीं तो थोड़े लोग जो बच्चे स्पेशली ऑरेंज जूस या नींबू पानी प्रिफर कर सकते हैं, वो लोग खाने पीने के बाद थोड़ा सा एक छोटा कप नींबू जूस या ऑरेंज जूस पीने से भी उनका आयरन अब्जॉर्प्शन बढ़ा सकते हैं।
1: जी, यानी हमें विटामिन सी अपने डाइट में रोज लेना चाहिए। जी, अक्सर लोग समय की कमी के कारण भी नाश्ता छोड़ देते हैं, क्या सुबह का नाश्ता छोड़ना हमारे मेटाबॉलिज्म पर बुरा असर डालता है?
0: बहुत सारे स्टडीज भी कह रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म के लिए, अच्छी मेटाबॉलिज्म के लिए, गुड गट हेल्थ के लिए नाश्ता बहुत जरूरी है, पर आजकल सब लोग भागने में बहुत बिजी हैं
1: जी
0: क्योंकि हमारा काम भी वैसा है, पर थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है अपने खाने पीने के लिए। तो सिंपल चीजें भी बना के हम खा सकते हैं, ओनली थिंग इज थोड़ी सी और ज्यादा श्रद्धा रहना चाहिए और थोड़ी सी मील प्लानिंग जो बोलते हैं, मेनू प्लानिंग, हफ्ते
1: जी
0: भर के लिए मेनू प्लान करके रख देंगे, सुबह उठते ही वो हड़बड़ी नहीं होती है,
1: जी
0: तो वैसा हम प्लान करके करेंगे तो थोड़ी बहुत टाइम हम अच्छे से फुर्सत से थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए भी रहता है।
1: जी यानी हमें सुबह का नाश्ता बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। जी
0: और एक चीज है, जो लोग नाश्ता स्किप करते हैं उनमें भी हम ज्यादा तक ओबेसिटी देखते हैं,
1: जी
0: मोटापा ज्यादा देखते हैं, क्योंकि रात में हम 9, 8 से 10 बजे के बीच में जो खाना खाते हैं, फिर सुबह में 11, 1 बजे में जो लंच करते हैं वो पेट भर के खा लेते हैं। जैसे हम पेट भर के खाते हैं उसमें क्या हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है,
1: जी
0: तो इसीलिए ज्यादा तक लोग ओबेसिटी, डायबिटीज रिस्क, गैस्ट्रिक एसिडिटी, ये सब चीजें बहुत ज्यादा देखते हैं जो लोग नाश्ता स्किप करते हैं।
1: जी सौम्या जी, आजकल बाजार में शुगर फ्री और लो फैट लेबल का बड़ा चलन है, क्या ये उत्पाद सचमुच सेहतमंद है या सिर्फ ये मार्केटिंग का खेल है?
0: लो फैट, लो शुगर, लो जहां है वो चीजों को हम सिर्फ आगे की लेबल ही नहीं, पीछे का लेबल भी देखना बहुत जरूरी है। जैसे
1: जी
0: न्यूट्रिशन लेबल बोलते हैं या न्यूट्रिशन फैक्ट्स बोलते हैं, जो हमारे हर पैक्ड फूड के कवर के पीछे रहता है, उनको देखना जरूरी है, सिर्फ आगे के शब्दों से नहीं जाना। बहुत बार ये मार्केटिंग गिमिक होता है, जैसे लो शुगर बोला जाता है उसमें कुछ ना कुछ ऐसे शुगर फ्री चीजें डाले जाते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बोलते हैं, जो
1: जी
0: सेहत के लिए बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं होता है, जैसे बच्चे रहने दीजिए, प्रेग्नेंट वुमेन रहने दीजिए, लैक्टेटिंग वुमेन रहने दीजिए, ये लोगों के लिए ये सब चीजें सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और जनरल पब्लिक को भी क्या होता है, ऐसे ज्यादा तक लो फैट और लो शुगर के चीजें खाएंगे तो आजकल हम लोग ये मेटाबॉलिक डिजीज ज्यादा देख रहे हैं, जिसमें से यूरिक एसिड भी बढ़ने के ज्यादा चांसेस हैं।
1: जी ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। स्वामी जी, पानी पीने को लेकर भी बड़े भ्रम है, कोई कहता है दिन में 4 लीटर पियो, कोई 2 लीटर, सही पैमाना क्या है?
0: पानी एक ऐसा चीज है हमारी शरीर में, जैसे उसको एलिक्जर कहा जाता है, जैसे बिना पानी का शरीर तो चलने वाला नहीं है, क्योंकि उसी से हमको ऑक्सीजन मिलता है, उसी से हमारे पूरे रसायन रिएक्शंस, जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं बॉडी में, वो पूरे चलते हैं, तो पानी तो बहुत मायने रखता है। और बहुत जरूरी चीज जो है डाइजेशन, तो जीर्ण शक्ति को बढ़ाने के लिए भी सही तरीके की या सही क्वांटिटी ऑफ वाटर लेना भी बहुत जरूरी होता है। दो से 4 लीटर तक ले सकते हैं, पर हम अपने अपने काम के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो 3 लीटर तक क्या है, सेफ अमाउंट है सबके लिए, जो नॉर्मल सेहत वाले हैं।
1: जी
0: तो फिर यहाँ पे डायबिटीज वालों को, या नहीं तो कोई पेशेंट को किडनी प्रॉब्लम है, कोई पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम है, फिर वो लोग अपनी अपनी सेहत या
1: जरूरत के हिसाब
0: हाँ
1: से।
0: जरूरत के हिसाब से उसको चेंज करना जरूरी होता है।
1: जी
0: या जो लोग अभी यंग बच्चे हैं, जिम वगैरह करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो ये लोगों को क्या है, ज्यादा लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग पसीने के तरह से बहुत ज्यादा पानी शरीर में से निकल
1: निकल
0: जाता
1: जाता
0: है,
1: है। जी
0: तो
1: जी
0: ये लोग 4 से 5 लीटर तक भी ले सकते हैं।
1: जी सौम्या जी, अब मैं अगला सवाल ये पूछना चाहूंगी कि दादी नानी के जमाने में मोटा अनाज यानी मिलेट्स जैसे बाजरा, ज्वार, रागी खूब खाया जाता था, अब इनका चलन दोबारा आ रहा है, इन्हें अपनी डाइट में कैसे जोड़ें?
0: मिलेट्स एक ऐसा चीज है जो हमको पता भी है और पता नहीं भी है, बनाना भी मुश्किल है थोड़ा सा, आजकल की जनरेशन को अच्छी सही तरीके से चुन के लेना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि हर चीज जो मिलेट बोला गया है उसको आंख बंद करके भी नहीं लेना है। मिलेट सिंपल चीज है, हम लोग देखा गया तो हफ्ते में एक बार बहुत सारे लोग भी लेते हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, कूटी है, या नहीं तो

0: बार्ली है, ये
1: जी
0: सब चीजें, रागी बहुत कॉमन चीज है, तो ये सब चीजें हमारे खाने पीने में तो जनरली चलता ही रहता है। पर ये चीजों को क्या है, थोड़ी हम रोटी के तरह से ले सकते हैं, डोसा बना के ले सकते हैं, इडली के तरह ले सकते हैं, पॉरिज अम्बली के, अम्बली बोलते हैं ना, वैसे भी
1: जी
0: ले सकते हैं। अभी जैसे आपने कहा कि नाश्ता नहीं करे, नाश्ता करने का टाइम नहीं है किसी के
1: जी
0: पास, तो ये अम्बली के जैसा हम रागी को सुबह नाश्ते में ले सकते हैं।
1: जी
0: पर एक याद रखना है, हमारी सेहत नॉर्मल है तो ये सब चीजें नॉर्मल ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब जैसे मैंने कह दिया ये सबको लागू नहीं होता है, जिनमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो लोग थोड़ा सा ये सब चीजों को भी समझ के लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें खनिज ज्यादा हो जाते हैं, तो
1: जी
0: थोड़े केसेस में जैसे किडनी के प्रॉब्लम्स में, हार्ट के प्रॉब्लम्स में, ये चीजों को रेगुलरली लेना भी सेहत के लिए ठीक नहीं हो सकता।
1: जी यानी सही पैमाने में अगर हम इसका सेवन करें तो इसका लाभ भरपूर उठा सकते हैं। जी सौम्या जी, आगे मैं पूछना चाहूंगी, बच्चे सब्जियां और फल खाने में बहुत आनाकानी करते हैं और फास्ट फूड का जिद करने लगते हैं, तो माता-पिता उनके पोषण का ख्याल कैसे रखें?
0: सब्जियां और फल जो होते हैं देखा गया तो बहुत कलरफुल होते हैं और उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स भी बहुत भर के रहते हैं, पर क्या है, टेस्ट अलग हो जाता है। जैसे वो मीठे मीठे नहीं होते हैं तो बच्चों को उतना पसंद नहीं आता है,
1: जी
0: और ये चीजों को चबा के खाना पड़ता, उस वजह से भी बच्चे अवॉइड करते हैं। तो बच्चों को क्या है ना, बचपन से खाने को चबा के खाने की आदत जब हम करवाएंगे, वो लोग आसानी से ये चीजों को इंक्लूड करेंगे,
1: जी इनका सेवन करेंगे।
0: इनका
1: जी
0: सेवन कर सकते हैं।
1: जी
0: पर हम जब जल्दी जल्दी खिलाने की कोशिश में क्या हो जाता है, बच्चे हर चीज को निगलने की कोशिश ज्यादा करते हैं
1: जी
0: बिना चबा के, तो
1: जी
0: इसमें ये चीजें जैसे एज बढ़ता जाएगा ये सब टेस्ट अलग हो जाएंगे, फिर वो पसंद नहीं आएंगे।
1: जी
0: पर ये चीजें हमारे गट हेल्थ के लिए, फाइबर क्वांटिटी हमारे शरीर को मिलने के लिए बहुत जरूरी है। और जैसे हमने अभी एनीमिया के बारे में भी देखा है, तो एनीमिया नहीं रहना बोले तो भी बैलेंस्ड डाइट और हर तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डाइट में रहना जरूरी है।
1: जी
0: तो जैसे बच्चों को फास्ट फूड पसंद आता है, इनको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। जैसे सूप बना सकते हैं, या नहीं तो कुछ कटलेट के जैसा बना के दे सकते हैं, या जैसे आप पास्ता या नूडल्स कुछ बना रहे हैं उसमें भी ज्यादा ये वेजिटेबल्स डाल के बना के खिला सकते हैं, ताकि उनको आदत पड़ जाए कि हर चीज में ये डालते हैं इनको खाना भी पड़ेगा। जैसा रोटी पराठा वगैरह होता है उनमें भी हम फिलिंग करके दे सकते हैं, तो वैसे भी उनको इंक्लूड करना बहुत जरूरी है।
1: जी यानी थाली में अगर बच्चों को हर चीज आदत कराएं वो इंटरेस्ट लिखाएंगे। सौम्या जी, बुजुर्गों के पोषण के बारे में बात करें तो उम्र के इस पड़ाव पर पाचन धीमा हो जाता है यानी डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, उनके आहार में क्या बदलाव होने चाहिए?
0: एक बहुत जरूरी प्रश्न है, क्योंकि जैसे उनका उम्र बढ़ता है उनका खाना पीना कम हो जाता है, एक दांत नहीं रहने के वजह से, एक जैसे आपने कहा
1: जी
0: पाचन शक्ति कम होने के वजह से, तो इनमें क्या है ना, हम उनको अच्छा सा पका के, जैसे बहुत अच्छा सा प्रेशर कुकर, आजकल तो प्रेशर कुकर्स बहुत अवेलेबल है,
1: जी
0: तो अच्छा सा उनको प्रेशर कुक करके, सॉफ्ट कुक करके हर चीज उसमें डाल के दे सकते हैं। और देखना पड़ेगा कि ये लोग खाना क्यों कम कर रहे हैं,
1: जी
0: अगर खाने के टेस्ट के वजह से या नहीं तो दांत नहीं होने के वजह से, तो उस हिसाब से उनको क्वालिटी ऑफ द फूड चेंज करके देना पड़ेगा।
1: जी जैसे उन्हें पतली खिचड़ी दलिया दे तो अच्छा होगा।
0: हाँ, और उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा चने की आटा, सोया की आटा, थोड़ा पनीर ग्रेट करके डाल देंगे, तो उनको उनका प्रोटीन भी मिल जाता है, क्योंकि
1: जी
0: वो प्रोटीन की कमी बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से ये लोगों का मसल लॉस ज्यादा हो जाता है।
1: जी
0: तो इसीलिए हम थोड़ा सा पनीर, टोफू, या नहीं तो बेसन, सिंपल बेसन, सत्तू की आटा, ये सब सूप्स में डाल के दे दिए तो भी उनको बैलेंस्ड खाना मिल जाता है।
1: जी सौम्या जी, अगला मेरा एक मुख्य सवाल ये है कि नमक और चीनी, इन दोनों को आज के दौर का सफेद जहर कहा जाता है, दैनिक जीवन में इनकी मात्रा को सुरक्षित दायरे में कैसे रखें?
0: नमक और चीनी ऐसी चीजें हैं जो बहुत अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से ये चीजों को हमारे खाने पीने में एक पार्ट हो गया है,
1: जी
0: तो उसके बदले में जैसे शक्कर के बदले में फ्रूट्स जहां जहां भी डाल सकते हैं वो चेंज कर सकते हैं, और नमक के बदले में हल्का सा जीरा, अदरक, अजवाइन ऐसे चीजों को, जैसे

0: हर्ब्स बोला जाता है,
1: जी
0: वैसे चीजों को डाल के नमक की इस्तेमाल भी कम कर सकते हैं। एक जरूरी चीज ये है कि जैसे हम एज बढ़ता जाएगा, ये चीजों को थोड़ा सा खुद ब खुद कम करें तो लाइफ लॉन्ग हमको बहुत सारे चीजों पर ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होने की जरूरत नहीं रहती।
1: जी सौम्या जी, क्या चीनी की जगह पे गुड़, खजूर या शहद का इस्तेमाल किया जा सकता है?
0: ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज भी चलते हैं। शक्कर एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड आइटम बोलते हैं,
1: जी
0: तो इसीलिए इसको कम करना जरूरी है, पर उसके बदले में शहद, गुड़ यानी तो खजूर जो खाएंगे उनको भी हम लिमिटेड खाना ही इम्पोर्टेंट है।
1: जी
0: ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रिप्लेसमेंट करते करते इनको बहुत ज्यादा हम अपने खाने में इंक्लूड कर दिए। और एक चीज ध्यान में रखने वाली ये है कि जो डायबिटिक होते हैं उनको शहद, खजूर और किशमिश भी शक्कर के जैसे ही है, तो इसीलिए वो लोगों को ये पूरा ही चीज इस्तेमाल नहीं करना है।
1: सौम्या जी, आखिरी में ये पूछना चाहूंगी, गट हेल्थ यानी हमारे पेट के माइक्रोबायोम को स्वस्थ रखने के लिए क्या खाना चाहिए?
0: गट माइक्रोबायोम या गट हेल्थ जो बोलते हैं, उसमें क्या होता है, डाइट डाइवर्सिटी, जैसे जितने हम अपने लोकल सीजनल फल और सब्जी और जो अनाज मिलते हैं, जितने वैरायटी हम अपने खाने पीने में इस्तेमाल करेंगे उतना ही हमारा गट हेल्थ अच्छा होगा। और दूसरी चीज ये है, जितना हम नेचुरल चीजें यूज करेंगे उसमें गट हेल्थ अच्छा होगा।
1: जी
0: हम जितना ज्यादा प्रोसेस्ड चीजें इस्तेमाल करेंगे गट हेल्थ को डिस्टर्ब करेंगे, तो इसीलिए प्रोसेस्ड नहीं, जो सीजनल होते हैं, फ्रेश होते हैं, लोकल होते हैं, ये चीजों को इस्तेमाल करें तो गट हेल्थ भी स्ट्रांग रहेगा। और उसके वजह से जैसे मेटाबॉलिक डिजीजेस जो होते
1: जी
0: हैं, हार्ट की बीमारियां रहने दीजिए, डायबिटीज रहने दीजिए, ओबेसिटी रहने दीजिए, ये सबको हम कम करने की कोशिश भी कर सकते हैं।
1: जी सौम्या जी, जाते जाते हमारे सभी श्रोताओं के लिए आपका पोषण मंत्र क्या होगा जिसे वे आज से ही अपनी जिंदगी में लागू कर सके?
0: क्योंकि मैं डाइटिशियन हूं, कोई चीज को ना नहीं बोलूंगी, पर डाइट डाइवर्सिटी एक ऐसी चीज है जो जितने हम वैरायटी खा सकते हैं उसको हम इस्तेमाल करना जरूरी है, पर उसके साथ साथ क्वांटिटी होता है, मॉडरेट क्वांटिटी में खाएंगे तो बहुत सारे चीजों को हम एंजॉय भी कर सकते हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है।
1: तो श्रोताओं, श्रीमती सौम्या कलूरी, डाइटिशियन, जिन्होंने बहुत ही सहजता से हमें समझाया कि तंदुरुस्ती किसी महंगे डिब्बे में नहीं बल्कि हमारी रसोई और पारंपरिक थाली में ही मौजूद है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के इस अवसर पर आइए हम सब संकल्प लें कि हम अपने और अपने परिवार के खान पान के प्रति थोड़ा और सजग बनेंगे। सौम्या जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और इतनी उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं से साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के उपलक्ष्य में पोषण विशेषज्ञा श्रीमती सौम्या कलोरी से भेंटवार्ता। इनसे बातचीत कर रही थी कृष्णा कुमारी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी हैदराबाद से प्रसारण किया गया। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं एक फिल्म संगीत।

0: मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रहे हैं। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
1: वजीर आजम ने मुल्क को बड़े पैमाने पर सामान दरामद करने वाले मुल्क के बजाय एक सरकर्दा बरामदकार मुल्क बनने में मेक इन इंडिया पहल की कामयाबी का भी तذکرہ किया। अपने खिताब में जनाब मोदी ने बताया कि स्मार्टफोन की बरामदात 2.5 लाख करोड़ रुपए से तजावज कर गई है, जबकि अंदरून मुल्क दिफाई सामान की तैयारी तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गई है, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा है। भारत ने मसावी इलाके पर मुश्तमिल आलमी नक्शे के बारे में अक्वामे मुत्तहिदा की करारदाद की हिमायत की है और ये बात दोहराई है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत के सरकारी नक्शे के मुताबिक दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि इकतदारे आला और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की मुतालिका करारदाद पर वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने यह वजाहत की है कि नक्शे में किसी इलाके को गलत या गुमराहकुन तरीके से दिखाना नाकाबिले कबूल है। उन्होंने कहा कि भारत के इकतदारे आला और इलाकाई सालमियत के बारे में सरकार का मौकफ बिल्कुल वाज़ह है और पायदार है और इस बारे में कोई समझौता नहीं हो सकता। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में मुश्तबह नकली शराब पीने के बाद 10 अफराद की मौत हो गई। मुख्तलिफ अस्पतालों में 10 से ज्यादा अफराद जेरे इलाज हैं। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: रियासत में सागर जिले की बांदा तहसील में मुश्तबा नकली शराब पीने के बाद 10 अफराद की मौत होने की खबर है। सागर जिले के चीफ मेडिकल हेल्थ अफसर देवेश परतारिया ने यह जानकारी दी है। मालूम हुआ है कि मरने वाले बराज गांव के रहने वाले थे। पुलिस और इंतजामिया की टीमें इस वाकये के बाद वहां पहुंच गई हैं। सागर के एसपी समेत आला एहलकारों ने उस मकाम का मुआयना किया। पुलिस इस पूरे मामले और इस बात की छानबीन कर रही है कि यह शराब कहां से आई थी। तहकीकात और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आने के बाद ही मौत की असल वजूहात वाजे हो सकेंगी। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शमीम इरफान।
1: उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश होने और बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से रियासत के 24 जिले सैलाब से मुतासिर हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ सैलाब की सूरत हाल और बचाव कार्रवाइयों का जायजा लेने के लिए चित्रकूट जिले में मौजूद हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: रियासत के कई दरिया अब भी तोगियानी पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में दरियाए गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जबकि फरुखाबाद में ये खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। लखीमपुर खेड़ी और बाराबंकी में शारदा, अयोध्या और तुर्तीपुर में घाघरा में भी पानी खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। चित्रकूट में दरिया यमुना में पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में वरुणा नदी के सैलाब से मुतासर इलाकों का हेलीकॉप्टर से जायजा लिया। उन्होंने एक राहत कैंप का दौरा करके मुतासरीन से उनका हाल जाना और राहत सामान तकसीम किया। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात ने अगले 4 दिन के दौरान रियासत के शुमाली हिस्से और अगले 2 दिन के दौरान मगरबी जिलों में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: भारतीय मौसमियात महकमे ने हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज तेज बारिश होने की पेशगोई की है। इधर कौमी राजधानी दिल्ली में आज दूसरे दिन भी औसत से लेकर शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे शहर के कई इलाकों में पानी भर जाने और ट्रैफिक की आमदोरफ्त पर असर पड़ने की इत्तला मिली है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मगरबी बंगाल और शुमाल मशरकी भारत के बाज़ हिस्सों में कल तक इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। ईरान के मगरबी हिस्से में एक ईंधन टैंकर में धमाका होने से 11 अफराद की मौत हो गई, जबकि 7 जख्मी हो गए। ईरान में कुर्द शहर सनंदज के नज़दीक ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के करीब कई कारों से टकराने के बाद ये टैंकर आग के शोलों में घिर गया। सनंदज राजधानी तेहरान के कोई 400 किलोमीटर मगरिब में वाक़ है। इत्तलात के मुताबिक ब्रेक निज़ाम में खराबी की वजह से ये वाक़या पेश आया। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। ईरान की सिपाही पासदारा ने इनकलाब IRGC की बहरी फोर्स ने दावा किया है कि उसने आबनाए हुरमुज में गैर मजाज करार दिए गए रास्ते से गुजरने वाले

0: तीन तेल बरदार बहरी जहाजों को निशाना बनाया है। इसके अलावा उसने तीन ऐसे बहरी जहाजों को भी निशाना बनाया है जो मुबैना तौर पर अमरीका से वाबस्ता थे। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी तीसरी मर्तबा चाइना मास्टर्स के डबल्स के फाइनल में खेल रही है। आलमी नंबर 5 जोड़ी का मुकाबला हे जी तिंग और रेन शियांग यू की चीन की जोड़ी से हो रहा है। खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की इक्तसादी कुव्वत और वलवला अंगेज पॉलिसी की बदौलत मुल्क विकसित भारत की समत गामजन है। वजीर आजम ने भारतीय कंपनियों से जोर देकर कहा कि वो दुनिया की क्यादत के लिए आगे आएं। भारत ने मसावी इलाके पर मुश्तमिल आलमी नक्शे के बारे में अकवाम मुत्तहिदा की करारदाद की हिमायत की है और ये बात दोहराई है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत के सरकारी नक्शे के मुताबिक दिखाया जाना चाहिए क्योंकि इक्तदार आला और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश के सागर जिले में मुश्तबह नकली शराब पीने के बाद 10 अफराद की मौत हो गई जबकि कई लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ईरान ने आबनाए हुरमुज में 3 अमरीकी टैंकरों और बहरी जहाजों पर हमला किया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में शदीद बारिश के बाद सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी चाइना मास्टर्स टूर्नामेंट के मर्दों के डबल्स के फाइनल में चीन की जोड़ी के साथ खेल रही है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम लालिमा अनेजा डैंग विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's economic strength and policy dynamism is driving nation towards Vikasit Bharat, calls upon Indian companies to aspire to lead the world. India backs UN resolution on equal area world map, reiterates Jammu and Kashmir and Ladakh must be depicted as per Indian official map as sovereignty and territorial integrity are non-negotiable. 10 people dead, several hospitalized after consuming suspected spurious liquor in Sagar district of Madhya Pradesh. Iran strikes 3 US tankers and vessels in Strait of Hormuz. Flood situation worsens in Bihar and Uttar Pradesh after heavy rainfall. IMD forecasts heavy rain over Haryana, Chandigarh, Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh. In China Masters Badminton, Indian pair of Sattvic Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to take on Chinese pair in title clash this afternoon. Prime Minister Narendra Modi has called upon Indians to dream big and lead from the front, saying that if Indian talent can lead the world's top companies, Indian enterprises can also lead the world. Mr. Modi made these remarks while addressing the gathering at the centenary celebrations of Shriram College of Commerce, SRCC, in New Delhi. Encouraging the ambitious spirit of the 21st century youth, the Prime Minister celebrated their drive to build unicorns, innovate in drone technology and create cutting-edge AI solutions.
2: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
1: The Prime Minister also highlighted that the world now praises India's policy dynamism and its status as the fastest growing major economy. He asserted that achieving a 7.8% quarterly growth amid the West Asia war and global trade hurdles demonstrates India's intrinsic capability.
2: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
1: The Prime Minister also celebrated the success of the Make in India initiative in transforming the nation from a massive importer to a leading exporter. During his address, he shared that smartphone exports now exceed 2.5 lakh crore rupees, while domestic defense production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore rupees. Mr. Modi also noted that the defense exports, which were

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। तेज बारिश के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन यांग यू से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत के लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं तो भारतीय कंपनियां भी दुनिया का नेतृत्व कर सकती हैं। उन्होंने युवाओं से यूनिकॉर्न बनाने, ड्रोन तकनीक में नवाचार करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमताओं को दर्शाती है।
1: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
0: श्री मोदी ने मेक इन इंडिया की सफलता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत अब प्रमुख निर्यातक राष्ट्र बन रहा है। स्मार्टफोन का निर्यात 2 लाख

0: 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है, जबकि देश का रक्षा उत्पादन करीब 2,00,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने देश में तेजी से हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं को पूरा होने में पहले दशकों लगते थे, वे अब कुछ ही वर्षों में पूरी हो रही हैं। उन्होंने रेलवे के विद्युतीकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2014 तक 30% से भी कम रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ था, जबकि पिछले 12 वर्षों में लगभग 100% रेलवे विद्युतीकरण किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिवसीय गोवा दौरे पर हैं। वे कल रात गोवा पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री शाह आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
1: अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के साथ गोवा से जुड़े अहम मुद्दों पर समीक्षा बैठक की। इसके बाद वे जल्द ही मीडिया से बातचीत करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। वे पार्टी की स्टेट कोर कमेटी के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। कल 28वें वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 35 लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। इनमें कुछ की हालत गंभीर है। यह मामला बांदा थाना क्षेत्र के नौरोजा और घुघरा खुर्द गांवों का है। शुरुआती जांच में शराब में मिथाइल अल्कोहल होने की आशंका जताई गई है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि भारत के संप्रभु क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल हैं, उन्हें भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण को भारत स्वीकार नहीं करेगा। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट तथा अडिग है। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रस्ताव किसी खास मानचित्र, प्रक्षेपण या किसी देश की सीमा के चित्रण का समर्थन नहीं करता। होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास अमेरिका ईरान संघर्ष में इस सप्ताह एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों पक्षों ने होर्मुज जल डमरू मध्य और उसके आसपास जहाजों पर हमले किए हैं। कल के ताजा घटनाक्रम में अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा कि उसने ईरान के 3 तेल टैंकरों को निष्क्रिय कर दिया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने भी दावा किया है कि उसकी नौसेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य के संरक्षित क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रही रिमोट से संचालित अमेरिका की एक नाव को निशाना बनाया है। अमेरिका के दूत आज यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। शांति प्रक्रिया के तहत अमेरिकी दूतों की यह यूक्रेन की पहली यात्रा है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल क्रेमलिन में अमेरिकी दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर से मुलाकात की थी। बातचीत के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने कीव पर रूसी हमलों को 3 दिन के लिए रोकने का आदेश दिया। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भी सोमवार तक मॉस्को पर हमले रोकने के लिए तैयार है। नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 1,344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए DNA परीक्षण की सहायता ली जा रही है। 1,270 अज्ञात शवों का विवरण नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर दिया गया है। भारत और चीन की टीमों की सहायता से कई पनबिजली परियोजनाओं में बचाव अभियान अब भी जारी है। उधर चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई। तूफान सॉडेल से कई दिन की मूसलाधार बारिश के कारण यह दुर्घटना हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़

0: फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट जिले में स्थिति और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया।
2: राज्य की कई नदियां अभी भी उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और फरुखाबाद में खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गई है। वहीं लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में शारदा तथा अयोध्या और तुर्तीपार बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के पार पहुँच गया है। चित्रकूट के राजापुर में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में वरुणा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी। उधर मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्से और आगामी 2 दिनों तक पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार के कई हिस्सों में भी बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल तक बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली में भी लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है। इसके चलते कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कल बिजली गिरने की भी संभावना है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये विशेष सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आयोजन की सुरक्षा तैयारियों के अंतर्गत आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
3: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर NDMC क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अनुसार यमुना नदी के किनारे सुरक्षा उपायों की भी समीक्षा की गई है। इस बीच NDMC नई दिल्ली के प्रमुख इलाकों में सौंदर्यकरण और सड़कों के स्वरूप में सुधार से जुड़े कार्य कर रही है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के नेताओं, आउटरीच देशों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को एक मंच पर एकत्रित करेगा। समर्थ के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमारे संवाददाता ने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है।
4: सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमेरिकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम दूसरे अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंच चुकी है। ये एयर शो 8 से 10 सितंबर तक अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टीम सुनियोजित प्रदर्शनों की श्रृंखला के माध्यम से सटीकता, पेशेवर अंदाज और उड़ान कौशल का प्रदर्शन करेगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि सारंग टीम देश में ही डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव का संचालन करेगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
5: जो निर्देश होगा, जो भी प्रधानमंत्री जी का, वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
1: आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के साधारण चुनाव कराने के लिए सांविधिक नियम जारी किए हैं। ये नियम महापौर, अध्यक्षों और वार्ड सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव के साथ साथ उपमहापौर और उपाध्यक्षों के अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए बनाए गए हैं। संशोधित कानूनों के तहत नगर निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव

0: मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर किया जाएगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय जोड़ी का मुकाबला चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा। विश्व के पांचवें नंबर की भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद, अजनियन अयूब और टेन वी कियोंग को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व करने का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जलडमरों मध्य में अमेरिका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం, సమయం 2:30.

0: में खेले गए फाइनल में चौथी सीड याफ्ता सात्विक चिराग की जोड़ी ने चीन के ही जीटिंग रेन जांग यू की जोड़ी को 11-21, 21-13, 21-17 से कामयाबी हासिल की। वोटर फहरिस्तों की खसूसी जामे नज़रसानी के दौरान शिकायत और एतराज़ दाखिल करने की मुद्दत में मज़ीद 3 हफ्ते की तोसी करने की रियासती चीफ इलेक्ट्रल आफिसर सुदर्शन रेड्डी ने मरकज़ी इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की है। उन्होंने बताया कि मुद्दत में तोसी के सिलसिले में सियासी जमातों और वोटरों की जानिब से दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं। इसी बुनियाद पर मरकज़ी इलेक्शन कमीशन को लिखे गए मकतूब में मुद्दत बढ़ाने की अपील की गई है। एसआईआर के तहत शिकायत व एतराज़ दाखिल करने की मौजूदा मुद्दत रवामा 16 तारीख को ख़त्म होने वाली है। रियासत के 4 अजला के लिए महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया है। भद्राद्री, कोतावड़म, जयशंकर, भोपालापल्ली, महबूबाबाद और मुल्क अजला में हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। निर्मल ज़िले के बासरा में वाक़ श्री ज्ञान सरस्वती के मंदिर में अंजाम दिए जाने वाले मुख्तलिफ तरक़ियाती कामों का रियासती वज़ीर सियाहत व ज़िला इंचार्ज वज़ीर जुप्पली कृष्णाराव ने संग बुनियाद रखा। वज़ीर ने गोदावरी नदी के किनारे अकीदतमंदों की सहूलत के लिए 20 करोड़ रुपये की लागत से तामीर किए जाने वाले पुष्करालू घाटों के कामों का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि आइंदा गोदावरी पुष्करालू को इंतहाई शानदार अंदाज में मुनक़द करने के लिए हुकूमत बड़े पैमाने पर इंतज़ाम कर रही है। यदाद्री भुवनगिर ज़िले के तुर्कपल्ली मंडल के गंदामल्ला गांव में गंदामल्ला प्रोजेक्ट की तामीर के लिए रियासती हुकूमत के चीफ वीप व आलेर के रुकन असम्बली बी अयालैया ने आज भूमि पूजा की। इसके साथ ही प्रोजेक्ट की तामीराती सरगर्मियाँ शुरू होने वाली हैं। 1.41 TMC पानी ज़खीरा करने की गुंजाइश के साथ तामीर किए जाने वाले इस ज़खीरे के ज़रिए आलेर असम्बली हल्के के 58,000 एकड़ अराजी को आबपाशी की सहूलत फराहम होगी। तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की रुकन सेक्रेटरी पंचाक्षरी ने बताया कि कौमी लोक अदालत आइंदा माह 12 तारीख को रियासत भर में मुनक्कद की जाएगी। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में वाक़ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की हिदायत के मुताबिक तीसरी कौमी लोक अदालत का इनेकाद किया जा रहा है। रियासती वज़ीर अजहरुद्दीन ने महकमे अक़लियती बहबूद के मुख्तलिफ शोबों और इदारों को बाहमी तालमेल के साथ काम करते हुए ज़ेर अल्तवा मसाइल के हल के लिए तेज़ी से इकदाम करने की हिदायत दी। उन्होंने वाज़ा किया कि फैलें ज़ेर अल्तवा ना रहें और इन्हें बरवक्त निपटाया जाए। वज़ीर ने कल सेक्रेटरीट में वक्फ बोर्ड, उर्दू अकेडमी, शाही मस्जिद, अकामती स्कूलों और काजियों से मुतालिक उमूर पर जायज़ा अजलास मुनक़द किया। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। तेलंगाना असम्बली का मानसून इजलास कल से शुरू होगा। रियासती वजीर पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि रियासती हुकूमत गंगा पुत्राओं की फलाह बहबूद और माही गिरों की तरक्की के लिए पाबंद अहद है। बीजेपी के रियासती सदर एन रामचंद्रराव ने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासती हुकूमत एसआईआर के अमल को सहारा बनाकर बीजेपी के हामी वोटरों के नाम वोटर फहरिस्तों से हजफ करने की साजिश कर रही है। और इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों रूपरेखा तैयार जारी की है। उन्होंने मादक पदार्थों के खिलाफ देशव्यापी समन्वित अभियान चलाने का आह्वान किया। गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
2: 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए एक रोड मैप बनाया है। 26 से 29 को हमने मिशन मोड अवधि के रूप में चिन्हित किया है, समय सीमाएं तय की है। 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
1: श्री शाह ने बताया कि वर्ष 2014 से 2024 के बीच 1,19,00,000 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए गए। इनकी कीमत करीब 1,89,000 करोड़ रुपए है। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में सत्यनिकेतन में बहुमंजिला पीजी आवास की इमारत ढहने की घटना के बाद अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही

0: गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलंकर प्रदान करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमता को दर्शाती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार की तैयारी नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी होना चाहिए। गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और चरित्र निर्माण देश की प्रगति के लिए जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को नारी शक्ति का प्रतीक बताया। श्री राधाकृष्णन आज से असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। कोयला मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि केंद्र से कोयले की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण पंजाब के ताप विद्युत संयंत्रों में कम बिजली उत्पादन हो रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड पंजाब सहित पूरे देश में बिजली उत्पादन के लिए निर्बाध कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी को बंबई उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने कल उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। वे बंबई उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स में फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जीटिंग और रेन जियांग यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। A major rescue operation is underway after a multi-story building housing a student paying guest PG accommodation collapsed in Satyaniketan area of Delhi this afternoon. According to the All India Institute of Medical Sciences, AIIMS in New Delhi, 4 persons were brought to the trauma center for treatment. Of them, 1 person was brought dead, 2 persons are in critical condition and 1 was discharged. Meanwhile, the Delhi police has said that 6 persons have been rescued so far and shifted to hospitals. Several people are feared trapped. The police said during the local inquiry it was revealed that the building was 40 to 50 years old and some repair work was underway in the basement of the building when the incident happened. The Delhi Fire Service has deployed 18 fire tenders for the relief and rescue work at the location. The area where the incident occurred is close to the heart of Delhi University's South Campus and has several buildings, mostly housing student PGs, hostels and eateries. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu has directed all concerned agencies to work in coordination to ensure swift rescue efforts on the ground. Delhi Chief Minister Rekha Gupta in a social media post said an adjacent building has also been vacated as a precautionary measure and every possible effort is being made to safely rescue those trapped and provide

0: चीनदेशस्य शेन्जेन नगरे आयोजितायां बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां चाइना मास्टर्स पुरुष युगल प्रतियोगितायाः चषकं भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी युगलेन विजितम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गोवा राज्ये वार्ताहर सम्मेलने ऊनत्रिंशदधिकद्विसहस्रतमवर्षं यावत् भारतं मादकद्रव्यमुक्तं कर्तुं रूपरेखां प्राकटयत्। तेन मादकपदार्थविरोधी त्रिवार्षिक राष्ट्रिय अभियानस्य आह्वानं कृतम्। गृहमन्त्रिणा संसूचितं यत् प्रशासनेन शत मादक सञ्जालानि खण्डयितुं शत अपराधिनः भारतम् आनेतुं तथा शत अवैधिक प्रयोगशालाः विनष्टं कर्तुं उच्चलक्ष्यं विनिर्धारितम्। नवदेहल्यां श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स महाविद्यालयस्य शतवर्षे सम्पूर्णे सति आयोजिते शताब्दी समारोहे प्रधानमन्त्री मोदी मुख्य अभ्यागतः आसीत्। तेन जेन्जी युवा उद्यमिनः प्रोत्साहयितुम् उच्चलक्ष्यधारणस्य मन्त्रो दत्तः। तेन प्रोदीरितं यत् भारतीय मेधा जागतिक व्यापार जगत् नूतनां दिशं दर्शयति। एआई प्रौद्योगिक्याः उपयोगेन च देशः आर्थिक समृद्धिं प्राप्नोति।
1: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
0: आर्थिक दृढ़तां प्रतिपादयन प्रधानमंत्री अवोचत यत् पश्चिम एशिया संकटावधौ अपि भारतेन 7.8% यावत् अभूतपूर्व संवृद्धि मानमर्जितम्। अनेन भारतस्य आन्तरिक शक्तेः परिचयः लभ्यते। तेन प्रख्यापितं यत् वैश्विक संकटेषु भारतस्य दृढ नीति संचालनमद्य जागतिक स्तरे श्लाघनीयं वर्तते।
1: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
0: आत्मनिर्भर भारतस्य दिशि मेक इन इंडिया अभियानम अभूतपूर्वम परिवर्तनम साधयतीति प्रधानमंत्री अवोचत। अनेन अभियानेन भारतमद्य प्रमुख निर्यातक राष्ट्रम अभवत्। असौ न्यगादीत यत् स्मार्टफोन क्षेत्रे 2.5 लाख कोटि रूप्यकाणां निर्यातं सम्प्राप्तम्। रक्षा उत्पादने च 2 लाख कोटि रूप्यकाणां नूतन कीर्तिमानं स्थापितम्। भारतस्य भौगोलिक अखण्डतां संप्रभुतां रेखांकयन् विदेश मन्त्रालयः संयुक्त राष्ट्रस्य मानचित्र प्रस्तावे स्वपक्षम् उपस्थापितवान्। मन्त्रालयस्य प्रवक्त्रा रणधीर जयसवालेन प्रोक्तं यत् भारतेन यूएन प्रस्तावस्य समर्थनं कुर्वता स्पष्टं कृतं यत् भारतस्य राष्ट्रिय सीमासु किमपि भ्रामकं प्रदर्शनम् असह्यमस्ति। तेन प्रोक्तं यत् अयं प्रस्तावः कस्यापि देशस्य सीमायाः अनुमोदनं नैव करोति, अपि तु केवलं समानक्षेत्रफलप्रदर्शनस्य नीतिं पोषयति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। नवदेहल्याम् अद्य महती दुर्घटना अभवत् यत्र सत्यनिकेतन क्षेत्रे एकं पञ्चस्तरीयं भवनं ध्वस्तम् अभवत्। सूचनां प्राप्य देहली अग्निशमन दलेन 18 वाहनानि प्रेष्य आपदुद्धार कार्यम् आरब्धम्। ततः एव 4 जनाः उद्धृत्य चिकित्सालयं प्रति नीताः, तेषु एकः मृत्युमुपगतः, अन्ये च गभीरावस्थायां सन्ति। उपराज्यपालः तरंजीत सिंह संधुः मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता च पीडितानां साहाय्याय

0: శ్రోతలకు ఒక గమనిక. రేపు ఉదయం 10 గంటల నుండి 11 గంటల వరకు తెలంగాణ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రక్రియ మరియు సమగ్ర సమాచారం అనే అంశాన్ని గురించి ఆకాశవాణి వార్తా విభాగం ప్రత్యక్ష ఫోన్ ఇన్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ పోలీస్ రిక్రూట్ బోర్డ్ చైర్మన్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ శ్రీ వివి శ్రీనివాసరావు ఐపీఎస్ గారు పాల్గొని శ్రోతల సందేహాలకు సమాధానాలు తెలియజేస్తారు. ఈ కార్యక్రమ అనుసంధానకర్తగా శ్రీ ఎం శ్రీనివాస్ మహేష్ ఐఏఎస్ ఆకాశవాణి వార్తా విభాగ అధిపతి వ్యవహరిస్తారు. ఈ విషయం గురించి మీకున్న సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవడానికి మీరు చేయవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు 2324484834, 2324484836, 2970-4324, 2970-4735 ఈ 4 నెంబర్లకు మీరు ఫోన్ చేయొచ్చు. ఎస్టీడీ కోడ్ 040 జత చేసి ప్రకటన విన్నారు. సమయం 8:45, సమాచార సంధ్య ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి.
1: मुख्य समाचार. दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए. अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी. गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की. मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया. सोशल मीडिया के रचनात्मक उपयोग का भी आह्वान किया. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया. विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया. और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता. और अब समाचार विस्तार से. नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है. अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया. संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
2: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है. जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का, रेनोवेशन का काम चल रहा था. बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई. पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है. हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए. दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ.
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी. एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं.
3: 2 टीमें करीब 70 लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर और विक्टिम्स को हमने आइडेंटिफाई किया है और इसमें हमने अपने कैनाइंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं. हम कटिंग इक्विपमेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं. अभी तक 4 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और जो भी लोकल कम्युनिटी है वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रही है, असिस्टेंस दे रही है, सबके कोऑपरेशन से हमने 4 विक्टिम्स को निकाला है.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है. गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं. घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है. श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के

0: जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। श्री नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इस बीच श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इसके अतिरिक्त श्री शाह अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करना था। इससे पहले गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में श्री शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा भी जारी की है।
1: 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
1: 2004 से 14 जो कांग्रेस का शासन था उसमें ड्रग की मात्रा 26 लाख किलोग्राम और आज वो बढ़कर 14 से 26 में 1,19,00,000 किलोग्राम से ज्यादा पकड़ा गया। उसका मूल्य 1,89,000 करोड़। 14 से 26 में 48,66,000 किलो ड्रग विनिष्ट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर कर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
5: Our thoughts, our thinking, our actions should be controlled by one single factor, that is our own brain. Drugs should not determine what we should think. Our brain should determine what we should think and act. That's why wherever I am going, I am always saying, say no to drugs. Not only you should not take the drugs, you should not allow your friends, family members also should not take drugs.
0: असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का

0: समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉ. सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता को पहचानने की जरूरत है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आर्थिक शक्ति बन रहा है। देश व्यापार, वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी इस विकास यात्रा में आगे बढ़ रहा है। डॉ. यादव 3 दिन की दुबई यात्रा पर आज संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में अधिक निवेश और नए उद्योग आकर्षित करना है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमरीकी विमानवाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में संदिग्ध जहरीली और अवैध शराब के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर आबकारी विभाग के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। एक अन्य अधिकारी को जिले से हटाकर मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में वन्य जीवों के शिकार के खिलाफ चल रहे अभियान में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने बाघों के शिकार के आरोपी शेरू पारधी उर्फ शेरू सिंह को शहडोल के ब्योहारी से गिरफ्तार किया है। शेरू पारधी कटनी का रहने वाला है और करीब 1.5 साल से फरार था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कल आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच उत्तर प्रदेश में कई नदियां अब भी उफान पर हैं और 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं।
4: शाहजहांपुर जिले में गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और रामघाट का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने 800 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की और बेघर परिवारों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र दिए। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी हिस्से में अगले 4 दिनों तक और पश्चिमी जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। गंगा, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। चीन के शेंजेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के

0: रूपकों के अखिल भारतीय
1: रूपकों
0: कार्यक्रम
1: के
0: के
1: अखिल
0: अंतर्गत
1: भारतीय
0: सुने।
1: कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे रूपक, राखी गढ़ी, मिट्टी के नीचे सोया, महानगर। आलेख है डॉक्टर अप्पू सहारण का, प्रस्तुतकर्ता विनय कुमार।
2: आज की यात्रा किसी सड़क या ट्रेन की नहीं, यह यात्रा है समय की रेखा पर पीछे लौटने की। हमारी आज की आधुनिक दुनिया से मिलकर हम पहुंच रहे हैं लगभग 7,000 वर्ष पीछे। हरियाणा की हांसी जिले की उस पावन धरा के गर्भ में दबा है सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक विशाल सुनियोजित महानगर। पक्की ईंटों के मकान, चौड़ी सड़कें, वैज्ञानिक जल निकासी, कुएं, दस्तकार, व्यापारी और कृषि पर आधारित एक समृद्ध समाज, यही पहचान है राखी गढ़ी की।
3: हजारों वर्षों तक गुमनामी के अंधेरे में छिपा इतना बड़ा महानगर आखिर सामने कैसे आया? क्या यह किसी आकस्मिक संयोग का परिणाम था या निरंतर पुरातात्विक साधना का?
2: पुरातत्वविद व महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर रहे अमर सिंह ने कई वर्षों तक पढ़ाया है। वे समय समय पर छात्रों को राखी गढ़ी में हो रहे उत्खनन कार्यों को दिखाने के लिए ले जाते रहे। वे बताते हैं,
4: जहाँ तक राखी गढ़ी के प्रास्थल की खोज का प्रश्न है, हमारी जानकारी के अनुसार झज्जर गुरुकुल के संस्थापक व प्राचीन वस्तुओं के संग्रहकर्ता आचार्य भगवान देव, जिन्हें स्वामी ओमानंद सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 1960 के दशक के प्रारंभ में राखी गढ़ी प्रास्थल का दौरा किया। इस दौरान उनको यहाँ से कुछ प्राचीन बर्तन तथा वस्तुएं मिली, लेकिन वह इन वस्तुओं के ऐतिहासिक महत्व को स्वयं नहीं समझ पाए। उन्होंने ये अवशेष कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर सूरज भान को दिखाए। इसके पश्चात डॉक्टर सूरज भान ने 1963 में राखी गढ़ी का दौरा किया और वहां से प्राप्त अवशेषों की पहचान करके आधिकारिक रूप से ये सिद्ध कर दिया कि ये अवशेष भारत की प्राचीन सिंधु अथवा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। उन्होंने राखी गढ़ी के महत्व को समझकर आसपास के क्षेत्र का व्यापक रूप से सर्वेक्षण किया, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य अनेक ऐसे ही प्रास्थल प्रकाश में आए। राखी गढ़ी की खोज ने सिंधु सभ्यता के बारे में प्रचलित इस धारणा को ही बदल दिया कि ये सभ्यता केवल सिंधु घाटी क्षेत्र तक ही सीमित थी, बल्कि ये पुष्ट कर दिया कि वह भारत में सरस्वती नदी तथा इसके आसपास के विस्तृत क्षेत्र में भी ये फली फूली। इसीलिए सिंधु सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम दिया गया है। अंततः 1997-98 के सत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने यहाँ निरंतर 3 सत्रों तक उत्खनन किया। उत्खननों के परिणाम स्वरूप यहाँ पर प्रारंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के सांस्कृतिक अवशेष मिले। 2011 से 16 के बीच पुणे के डेक्कन कॉलेज के तत्कालीन कुलपति एवं प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर वसंत शिंदे के नेतृत्व में उत्खनन किए गए। टीला संख्या 7 से हड़प्पा कालीन कब्रिस्तान भी मिला, जिसमें नर और मादा मानव कंकाल मिले। 2022-23 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संयुक्त महानिदेशक संजय मंजुल ने भी यहां पर उत्खनन कार्य किया। अभी भी 2025-26 के सत्र में यहां पर उत्खनन शाखा नोएडा 2

0: मनोज सक्सेना के निर्देशन में कार्य जारी है।
1: सभ्यताएं हमेशा नदियों के आंचल में पनपती हैं। रावी के तट पर हड़प्पा का विस्तार हुआ और सिंधु के किनारे मोहनजोदड़ो का। वहीं राखीगढ़ी का सीधा संबंध था सरस्वती दृषद्वती के सूखे मैदानी क्षेत्र से, जो कभी अत्यधिक उपजाऊ था। राखीगढ़ी केवल एक शहर नहीं था, बल्कि इस पूरे नदी क्षेत्र का व्यापारिक और कृषि केंद्र था। यहाँ की समृद्ध खेती और जल प्रबंधन ही इस विशाल नगर के भरण पोषण का आधार था। प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट कहते हैं कि
2: दृषद्वती नदी सरस्वती नदी की प्रमुख सहायक नदी थी। ये नदियाँ शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती थी, जिसमें सरस्वती उत्तर की ओर तथा दृषद्वती दक्षिण की ओर बहती थी।
3: ये एक घग्गर की तरह एक सहायक नदी थी दृषद्वती, जो आपके शिवालिक निकल के और फिर आगे चल के ये करनाल और पानीपत के बीच से होते हुए और कई तीर्थ, महाभारत में बहुत तीर्थों का स्थान का धाम है, तो इस सफीदों यानी सर्प देवी और सर्व दमन के पास जाती थी, फिर पश्चिम को मुड़ जाती थी और इसके पास अश्विन वराह जीव और राम राय ये पवित्र तीर्थ स्थान थे और राम राय में इसके चार द्वार थे, उसमें राम राय था और राम राय के पास आपका राखीगढ़ी बसा हुआ है। और सरस्वती से मैंने एक संबंध बता दिया आपको, और इसकी जो धारा है वो आज भी आसन वराह जीन राम राय आप होते हुए हांसी हिसार सिसवाल मातर श्याम घाघरा रावस्तर सोथी होते हुए ये सरस्वती से संगम करती है सूरतगढ़ के पास, सरस्वती से इस पर संबंध है।
1: ऋग्वेद की ऋचाओं में इन नदियों किनारे भरतवंशी राजाओं द्वारा यज्ञ करने का वर्णन मिलता है। रविंद्र सिंह बिष्ट मानते हैं कि सरस्वती के दक्षिण में तथा दृषद्वती के उत्तर में जो क्षेत्र है उसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया है।
3: सभी नदी के किनारे है, अब वो लुप्त प्राय हो गई है, लेकिन एक जमाने में वो शिवालिक से लेके जहाँ तक सरस्वती संगम होता था सूरतगढ़ के पास एक प्राचीन स्थान है रंग महल के पास इसका मेल होता था सरस्वती का, इसका इतना महत्व था। मैं आपको ऋग्वेद की बात बताता हूँ कि उसमें एक श्लोक आता है कि दृषद्वत्याम मानुष आपयायाम सरस्वत्याम रेव दग्नि दिदीहि, इसका मतलब है कि दृषद्वती आपया और सरस्वती इतनी पवित्र नदियाँ थी कि इसके किनारे भरत वंश के राजकुमार देव स्वस्थ और देव वाक इन तीनों नदियों के किनारे यज्ञ किए, हो सकता है एक स्थान उसका राखीगढ़ी रहा।
1: राखीगढ़ी लगभग 350 से 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले 9 टीलों का समूह है। यहाँ परिपक्व हड़प्पा काल के साथ साथ पूर्व हड़प्पा काल के साक्ष्य भी मिले हैं। ग्रिड पैटर्न पर बनी सड़कें, नालियां और अग्निवेदियां यह सिद्ध करती हैं कि यहाँ का समाज प्रशासनिक और नागरिक दृष्टि से अत्यंत परिपक्व था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी एवं वर्तमान उत्खननकर्ता मनोज सक्सेना ने बताया,
4: राखीगढ़ी ग्राम दो गांव राखी खास और राखी शाहपुर को मिलाकर बना है। राखीगढ़ी के आसपास 9 टीले हैं जिनका विस्तार लगभग 350 हेक्टेयर में फैला है, जो इसे सिंधु सभ्यता का अब तक का सबसे विशाल नगरीय केंद्र बनाता है। राखीगढ़ी ग्राम टीला संख्या 4 एवं 5 पर बसा है, तो यहाँ उत्खनन का कार्य संभव नहीं है, परंतु टीला संख्या 5 पर कुछ क्षेत्र में हमें कार्य करने की जगह मिली और जहाँ पर हम लोगों ने इस वर्ष के जो एक्सकेवेशन है उसमें हमने कुछ ट्रेंच वहाँ लगाए और हमें कुछ घरेलू संरचनाओं की कच्ची मिट्टी की ईंटों के से निर्मित हैं वो प्राप्त हुई हैं। टीला संख्या 1 से 9 तक के अध्ययन से हमें पूर्व हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा काल के निरंतर सांस्कृतिक विकास और अधिवास के अनुक्रम को दर्शाते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ से उत्खनन में सुविकसित नगर नियोजन के प्रमाण मिले हैं, जिसमें सड़कों को समकोण पर काटना, जल निकासी की उचित व्यवस्था, पगी ईंटों की नालियां, कच्ची मिट्टी की ईंटों या सन ड्राइड ब्रिक्स का उपयोग घरेलू संरचनाओं में मिला है और 4-2-1 के अनुपात वाली ईंटों का प्रयोग मिला है। राखीगढ़ी की विशाल

0: एवं विस्तार को देखते हुए इसे सिंधु सभ्यता की पूर्वी राजधानी माना जा सकता है। टीला संख्या 2 और 7 के उत्खनन में हमें सर्वाधिक आश्चर्य में डाला। टीला संख्या 2 से अर्ध बहुमूल्य पत्थरों या सेमी प्रीशियस स्टोन्स के मनकों का प्रतिशत पूर्व के उत्खननों की तुलना में बहुत अधिक है।
1: राखी गढ़ी से कई हड़प्पा कालीन वस्तुएं मिली हैं। उत्खनन के दौरान अनेकों ऐसी छोटी छोटी चीजें प्राप्त हुई जो इस सभ्यता के लोग अपने दिनचर्या में उपयोग करते थे। प्रोफेसर अमर सिंह बताते हैं।
2: तांबे और सोने के आभूषण, पकी मिट्टी और सेलखड़ी से निर्मित मोहरें तथा मनके बनाने के केंद्र मिले हैं जो इसके विकसित शहरी रूप को दर्शाते हैं। चाक पर बने मिट्टी के बर्तन जिन पर काले रंग से भिन्न भिन्न प्रकार के चित्रण, चर्ट पत्थर से बनी ब्लेड्स, अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के अनेक प्रकार के मनके, पकी मिट्टी से निर्मित मनके, चूड़ियां, पशु या मानव की मूर्तियां, खिलौना गाड़ियां आदि भी प्रमुख रूप से मिले।
1: राखी गढ़ी वासी मामूली वस्तुओं से लेकर लैपिस लाजुली पत्थर से बने श्रृंगार के कीमती आभूषणों का अक्सर प्रयोग किया करते थे।
0: यहाँ से हमें कार्नेलियन, लैपिस लेजुली, जास्पर आदि के मनके, सोने के मनके, चर्ट के ब्लेड, टेराकोटा एवं शेल की बैंगल्स, अंजन शलाका आदि के साथ साथ करीब करीब 2 मीटर मोटी दीवारों की घरेलू संरचनाएं भी प्राप्त हुई हैं। टीला संख्या 7 जो कि दफन स्थल या बरियल माउंड है, से 7-8 मानव कंकाल मिले हैं जिसमें एक मानव कंकाल के पास से 17 सोने के मनके, 2 सोने के फाइल और 42 मृदभांड मिले हैं जो उस समय की समृद्ध सांस्कृतिक, समाधि परंपरा और आर्थिक संपन्नता को दर्शाते हैं।
3: अब प्रमाणित हो चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सुदूर क्षेत्रों में फैली अन्य सभ्यताओं के साथ मेलजोल होने के साथ साथ अच्छे व्यापारिक संबंध भी थे। राखी गढ़ी प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा होगा और यहाँ से भी दूर दूर तक व्यापार किया जाता होगा। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विकास पवार मानते हैं कि राखीगढ़ी के अन्य सभ्यताओं के साथ पारस्परिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे होंगे।
4: पुरातात्विक उत्खननों से अनेकों प्रकार के अर्धकीमती पत्थरों के मनके अवशेष रूप में मिले हैं जिनका कच्चा माल राखी गढ़ी के आसपास नहीं मिला। ये कच्चा माल सुदूर हड़प्पा स्थलों तथा दूर विदेशी हड़प्पा पुरास्थलों से निर्यात किया जाता था। उदाहरण के रूप में शंख गुजरात से, तांबा राजस्थान में स्थित खेतरी की खानों से, राखीगढ़ी के उत्खननों में जो मानकीकृत बात बटकरे एवं मोहरे मिली हैं, उससे यह साबित होता है कि आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के नियम एक समान थे। विदेशी क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध के फलस्वरूप राखीगढ़ी का व्यापार क्षेत्र अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, ओमान और फारस की खाड़ी तक भी था। वहाँ से कच्चे माल के रूप में अर्धकीन पत्थर अवशेष रूप में मिलते हैं। इस प्रकार राखीगढ़ी पुरास्थल का व्यापारिक मेलजोल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशी क्षेत्रों तक था।
1: अब सवाल उठता है कि इस कांस्य युगीन सभ्यता का निर्माण करने वाले लोग कौन थे? ये लोग कहीं से आए होंगे या फिर यहीं के गांवों व नगरों के मूल निवासी रहे होंगे। राखीगढ़ी के टीला नंबर 7 से प्राचीन कंकाल मिले हैं। वैज्ञानिकों ने इनका विस्तृत डीएनए अध्ययन व विश्लेषण किया है। एक महिला के प्राचीन कंकाल से माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए अध्ययन में U2B2 माइटोकॉन्ड्रिया हैप्लोग्रुप मिला है। डेक्कन कॉलेज के पूर्व कुलपति प्रोफेसर वसंत शिंदे का मानना है,
5: राखीगढ़ी में जो हड़प्पन कंकाल मिले हैं उनकी डेट लगभग 4,500 साल पुरानी है, तो उन लोगों का डीएनए सबसे प्रथम भारत में निकाला गया है। और इसके पहले हमको हड़प्पन लोग कौन थे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसमें मतभेद थे, कुछ लोग बोलते थे कि हड़प्पन लोग यहाँ के थे, कुछ लोग बोलते थे कि वो बाहर से मेसोपोटामिया से आए होंगे, उन्होंने इस सभ्यता को विकसित किया होगा ऐसा मानते थे। लेकिन इस डीएनए से जिसका रिजल्ट हमने एक दुनिया में सबसे प्रेस्टिजियस साइंटिफिक जर्नल है सेल, उसमें हम उसके रिजल्ट हमने पब्लिश किया है और इसको एक दुनिया में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जीनोमिक्स, उसने इसको अप्रूव किया है और उन्होंने बोला कि 2019 में जो 9 ब्रेक थ्रू रिसर्चेस हुए थे दुनिया में

उसमें राखी गले का जिक्र उन्होंने किया है, इसका मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसको एक्सेप्ट किया है। तो उसका रिजल्ट ये मिलता है कि हड़प्पन लोगों का जो जीन्स थे, जो डीएनए था, वो बहुत ही डिस्टिंक्ट था, जिसको हम एंशियंट एंसेस्टर साउथ इंडियंस बोलते हैं। वो जीन्स था जिनकी शुरुआत लगभग 12,000 साल पहले हुई थी। 12,000 साल के बाद इसमें धीरे धीरे म्यूटेशन शुरू हो गया और एक डिस्टिंक्ट जीन तैयार हो गया, उसको हम एंशियंट एंसेस्टर साउथ इंडियन जीन्स बोलते हैं। और वही जीन्स हड़प्पन लोगों में आए, और ये जो जीन्स है वो प्योरली इंडिजिनस लोगों के जीन्स है, यहाँ के

0: और उसका हमने विश्लेषण करके उसको हम हरप्पन जो सैंपल्स मिले थे राखीगढ़ी उससे हमने जोड़ा, तो उससे पता चलता कि साउथ एशिया के जो मेजर पॉपुलेशन है हमको एक इंडिकेशन मिलता है अंडमान निकोबार से लेके लद्दाख कश्मीर तक और अफगानिस्तान से लेके पूरा नॉर्थ ईस्ट तक जो सब लोगों हरप्पन लोगों के ही वंशज है इसका एक प्रमाण मिलता है। वो लोग क्या रिलीजन फॉलो करते हैं, क्या कास्ट फॉलो करते हैं उसका कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ये पता चलता है या एक अंदाज लगता है कि अभी के जो मॉडर्न लोग है वो हरप्पन लोगों के वंशज है। तो ये कंटिन्यूटी हमको दिखाई देते है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस हमको राखीगढ़ से मिला है।
1: राखीगढ़ी की अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर आधारित एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी जिसमें शिकार, मछली पकड़ने और संग्रहण के जरिए संसाधनों का कुशल प्रबंधन किया जाता था। कृषि आधारित पशुओं के साथ साथ जंगली जानवरों के होने के भी प्रमाण मिले हैं।
2: खुराई से स्पष्ट होता है कि पालतू जानवर राखीगढ़ी में जीवन का केंद्र थे। महत्वपूर्ण पालतू जानवर गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर थे। इनका उपयोग आर्थिक और व्यवहारिक कार्यों के लिए भी होता था। गायों का उपयोग परिवहन के लिए और खेतों में काम करने के लिए किया जाता था। बैल और भैंस खेतों में हल चलाने और सामान ले जाने का कार्य करते थे। गाय और भैंस की गोबर भी एक बहुमूल्य संसाधन थी। लोग इसका उपयोग खेतों में खाद के रूप में, फर्श और दीवारों पर प्लास्टर के लिए और ईंधन के रूप में करते थे। इन अनेक उपयोगों से पालतू जानवर केवल खाने का स्रोत ही नहीं रहते, वे खेती, निर्माण और घरेलू जीवन के लिए अनिवार्य थे। भेड़ और बकरी से मांस, दूध और ऊन या बाल प्राप्त होते थे। सुअर भी पाए गए हैं, कुत्ते के अवशेष भी मिले हैं। संभव है कि ये साथियों पहरेदारों के रूप में कार्य करते थे, शिकार में मदद करते थे और बस्ती के आसपास कचरा प्रबंधन में भी सहायक रहे होंगे। पालतू जानवरों के साथ साथ जंगली जानवरों का भी महत्वपूर्ण स्थान। विभिन्न प्रकार के हिरण और एंटीलोप की हड्डियां बताती हैं कि शिकार ने पशु संसाधनों को पूरा किया। शिकार से मांस, छाल और अन्य सामग्री मिलती थी और यह घरेलू पशुओं से मिलने वाले संसाधनों की कमी को पूरा करता था। राखीगढ़ी के निवासियों ने जली और छोटे जानवरों का भी उपयोग किया। मछली पकड़ने जल स्रोतों से संग्रहण का संकेत देती हैं, जिससे उनकी भोजन में प्रोटीन और विविधता आई। पक्षियों के अवशेष स्थानीय पक्षियों के शिकार या जाल में फंसाने का संकेत देते हैं। सरीसृप और शंखों के अवशेष नदियों, दलदली क्षेत्रों और संभवतः शंख शिल्प या व्यापार के उपयोग में की ओर भी इशारा करते हैं।
1: ये थे पंकज गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर, डेक्कन कॉलेज, पुणे।
3: लगभग 4000 साल पहले सरस्वती नदी सूखने लग गई होगी। धीरे धीरे समस्त सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगरों में चहल पहल कम होती चली गई होगी। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों में इस सभ्यता के पतन के बारे में मतभेद हैं। डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट जलवायु परिवर्तन को मुख्य कारण मानते हैं।
4: 8000 से 5000 ईसा पूर्व, जिसको आजकल कॉमन एरा कहते हैं, जलवायु के वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया है कि जैसे कि बहुत ज्यादा बारिश होती थी, बहुत ह्यूमिडिटी थी, बहुत बारिश होती थी 8000 से 3000 ईसा पूर्व। उसके बाद ही हड़प्पा सभ्यता आती है, उस वक्त भी काफी बारिश थी। तो ये है कि सिंधु नदी अपने सारे सहायकों के साथ, पांच नदियां पंजाब की, सिंध और सरस्वती, ये बहुत जल का भंडार लेके पहाड़ों से जाके आगे जाके समुद्र में जाती थी। वह समय था जब आदमी ने बस्ती बना के रहने लगा था। उसका प्रमाण मेहरगढ़ नाम के स्थान पर है। तो धीरे धीरे उन्नति होते हुए हड़प्पा संस्कृति, ये जो अर्बन सिविलाइजेशन हम कहते हैं, नागर सभ्यता का उद्भव होता है। और सारे जो प्राचीन महत्वपूर्ण स्थान है इन नदियों के किनारे ही बसे हैं, जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु के, हड़प्पा रावी के और गवेरीवाला सरस्वती के, कालीबंगा सरस्वती के, बड़ा वाली सरस्वती के और राखीगढ़ी और तमाम बहुत सारे प्राचीन स्थान सरस्वती के किनारे बसे थे, जिसमें एक प्रमुख हमने बताया अभी जो राखीगढ़ी था, विशाल पांच विशाल तब नगरों में। फिर क्या होता है कि 3000 के बाद थोड़ा धीरे धीरे ये बारिश का कम होने लगती है। खैर इतनी कम नहीं होती, इन्होंने बहुत इंतजाम किया था हिंदू सभ्यता वालों ने तो ये, लेकिन उसके अंतिम चरणों में 2100 से 1900 के बीच काफी पानी कम हो गया और 1900 ऐसा समय आया जब बिल्कुल बारिश का होना एकदम बंद हो गया। कभी फ्लैश फ्लड्स आते रहे होंगे लेकिन एकदम जिसे कि एरिडिटी, एक्सट्रीम एरिडिटी हो गई और उसी समय में ये सरस्वती, सरस्वती और ये इसकी सहायक नदियां सूखने लगी। और वही समय है जब

0: किनारे बसे हुए या साफ सिंध और इनके सब नदियों के किनारे बसे हुए प्राचीन नगर जो है, नगर और महानगर ये उजड़ने लगे, यानी कि आज नागर सभ्यता का विखंडन हो रहा। लोग शहरों से क्या करते, भूतहा शहरों में रह के, इसलिए वो गांव की तरफ जत्थे बना के कोई पूरब गया, कोई दक्षिण गया, कोई उत्तर की तरफ आया, तो इस ढंग से नागर सभ्यता का विखंड हो गया। तो जलवायु का बहुत बड़ा हाथ है सिंधु सभ्यता के विघटन में। और एक दूसरा कारण जिसके बारे में आजकल विद्वान नहीं बोलते हैं, 2100 के आसपास मेसोपोटामिया में पॉलिटिकल उथल पथल हुई है। ये तो सभी जानते हैं कि मेसोपोटामिया और जिसे आजकल इराक कहते हैं, यहाँ भी एक नगर सभ्यता थी बहुत समृद्ध। वहाँ हड़प्पा वालों का घनिष्ठ व्यापारिक संबंध उनसे था, जो वहाँ पॉलिटिकल उठा पथल भी जिसे 50 से 80 साल तक कहते हैं, वो समय है जबकि हमारे व्यापार से बहुत धक्का लगा। तो हमने जो उस व्यापार की वजह से, मतलब ये माइनिंग से लेके वस्तु बनाना और लॉजिस्टिक परिवहन वगैरह वगैरह, ये सब पे इतना धक्का लगा कि हड़प्पा की ये महानगर का विघटन होने लगा।
1: लेकिन इतिहास की खोज जितनी जरूरी है, उसका संरक्षण उससे भी अधिक चुनौतीपूर्ण है। हजारों वर्षों तक इतिहास को अपने गर्भ में सुरक्षित रखने वाले टीले, विशेषकर टीला नंबर 4 और टीला नंबर 6, आज आधुनिक अतिक्रमण और निर्माण का सामना कर रहे हैं। विकास और विरासत के संतुलन पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक युद्धवीर रावत के विचार।
2: ये सही, जहाँ भी खुदाई करता है या किसी स्मारक का विकास करता है, तो जरूर वहाँ के स्थानीय लोगों को एक तो ईएसआई की काम करने की पद्धति का पता चलता है, और उस ढंग से वो भी कई कामों में निपुण हो जाते हैं और उसमें अपना योगदान करते हैं। जैसे हम लोग वहाँ पर गई सामग्री वो स्थानीय बनाते हैं, खास करके खुदाई के लिए जो औजार होते हैं, उपकरण होते हैं, और स्थानीय लोगों को वहाँ पर ड्राइंग के लिए, सर्वेइंग के लिए हम उपयोग में लाते हैं और उनको सिखाया भी जाता है। साथ साथ उनको जो है विविध जो उपकरण हैं, जो इस चीज के जो है साधन हैं, उनके बारे में उनको जानकारी होती है, इसलिए उनका योगदान भी इसमें बढ़ जाता है। और खुदाई और अतिक्रमण को रोकने का जहाँ तक सवाल है, ये धीरे धीरे हम लोगों ने कई ट्यूनों को प्रोटेक्शन किया है, उनकी हम जो है फेंसिंग कर रहे हैं, और कई जो है टीलों पे हम शेड लगा करके एक जीवंत जो है संग्रहालय बना रहे हैं, ताकि लोग जान सके कि क्या क्या वहाँ पर है। तो उसमें भी इन लोगों का योगदान रहेगा, और वहाँ पर जो है भविष्य में कई लोगों को जो है गाइड की और इस चीज की जो है जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि स्थानीय लोगों का उसमें बड़ा योगदान हो सकता है।
3: राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख नगर है। इस सभ्यता पर हरियाणा प्रदेश गौरवान्वित है। राखीगढ़ी में एक बड़ा संग्रहालय और हड़प्पन नॉलेज सेंटर बन रहा है। हरियाणा सरकार के पुरातात्विक विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर नरेंद्र परमार के अनुसार,
4: राखीगढ़ी के टीलों पर राखी, शाहपुर और रोखीथा दो गांव बसे हुए हैं, जहां टीले प्राचीन संस्कृति के वाहक हैं और वर्तमान गांव हैं आधुनिक जीवन शैली को दर्शाते हैं। तो हरियाणा सरकार इन टीलों और वर्तमान गांव के माध्यम से हरियाणा की 10,000 साल की जो गौरवशाली यात्रा है उसको दिखाने का प्रयास कर रही है। प्राचीन समय में हरियाणा के लोगों की जीवन शैली ऐसी थी और वर्तमान समय में ऐसी थी, और इस यात्रा में क्या क्या कंटिन्यूटी है और क्या क्या बदलाव हुए हैं, इसको भी हम विश्व के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। राखीगढ़ी में 200 करोड़ की ज्यादा के लागत से एक विश्व स्तरीय म्यूजियम हरियाणा सरकार के माध्यम से बन रहा है, और उसमें भी अतीत से वर्तमान की यात्रा है, उस पर भी विशेष फोकस रखा गया है।
1: हरियाणा पुरातत्व विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर नरेंद्र परमार भविष्य में राखीगढ़ी को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के प्रति आशान्वित हैं।
3: स्थानीय युवाओं को हेरिटेज गाइड के रूप में प्रशिक्षित करना और होम स्टे व सांस्कृतिक पर्यटन से जोड़ना ही इस स्थल को जीवंत बनाए रख सकता है। राखीगढ़ी केवल एक खुदाई स्थल नहीं, एक जीवंत गांव भी है, जहां अतीत और वर्तमान एक साथ सांस लेते हैं, जहां किसान अपने खेत जोतते हुए मिट्टी में दबे इतिहास को स्पर्श करते हैं। इस अनूठी सह अस्तित्व की भावना पर राखीगढ़ी के सरपंच दिनेश का क्या कहना?

0: हमारे गांव के आर्टिस्ट, क्राफ्टमैन, महिलाएं सबको एक रोजगार के रूप में विकसित गांव धीरे धीरे हो रहा है। हमारे गांव को लिविंग हेरिटेज लैंडस्केप के रूप में विकसित करने के लिए हम पुरजोर प्रयास करते रहते हैं, और एक एक्सपोजर मिलता है कि देश विदेश से घूमे हुए लोग हमारे यहाँ आते हैं, उनके आइडियाज हम हमारे साथ शेयर करते हैं, और उस उनको हम एग्जीक्यूट भी करते हैं उन आइडिया आइडिया को लेके। तो वैसे ही प्रयास में हमने मतलब एक पूरी बड़ी गाइड टीम को विकसित किया, राखी गढ़ी में ट्रेडिशनल फूड बनाने वाली महिलाओं को विकसित किया है, और हमारे जो क्राफ्टमैन है उनका तो कहना ही अलग है। हमारे गांव की कई महिलाओं की दरिया बाहर के कंट्री में बहुत डिमांडिंग है। हमारे गांव की लेडीज जो रोटी बनाने के लिए बोहिया बनाते हैं सरकंडे और पन्नी के, वो बहुत फेमस है। महिलाएं हमारी बाहर के बड़े स्कूल्स में क्राफ्ट वर्कशॉप के लिए जाने लगी है। आगे के प्लान के तौर पे हम हमारे गांव के 200 साल पुरानी चौपाल को एक लिविंग हेरिटेज लैंडस्केप के रूप में देख रहे हैं, कुछ हवेलियों को बाहर के लोगों के साथ मिलकर विकसित कर रहे हैं।
1: राखी गढ़ी कभी विशाल महानगर रहा होगा। राखी गढ़ी का पूरा रहस्य अभी धरती के गर्भ में ही छिपा है। अभी तो उन रहस्यों से भी पर्दा उठना बाकी है जो लिपि को पढ़ने का मार्ग दिखाएंगे। युवा पुरातत्वविद डॉक्टर दिशा आलूवालिया ने समय समय पर हुए उत्खनन कार्यों में भाग लिया है। खुदाई के दौरान उन्होंने करीबन 400 मिट्टी की ईंटें निकाली थी। दिशा आलूवालिया का मानना है कि अभी बहुत काम होना बाकी है।
2: अभी बहुत बड़ा हिस्सा है राखी गढ़ी का जो कि हिंटरलैंड एरिया भी है। हमें नहीं पता है कि सिटी का छोर कहाँ खत्म हो रहा था और उसका सैटेलाइट एरिया कहाँ शुरू हो रहा था। हमें अभी तक जो जानकारी है वो स्टैटिग्राफी और जो कितने सालों तक वहाँ ऑक्यूपेशन रहा है हमें वो पता है, बट कितना और बड़ा सेटलमेंट हो सकता है हमें उसकी जानकारी पूरी तरीके से नहीं है। धोलावीरा के जैसे एक हाइड्रोलिक सिस्टम होना बहुत जरूरी है, और राखी गढ़ी में जो बड़े बड़े ड्रेन्स मिलते हैं, हमें वेल्स मिलते हैं, और जो लास्ट एविडेंस टैंक का मिला था वो ये बताता है कि एक बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड हाइड्रोलिक सिस्टम है, पर अनफॉर्चुनेटली हम उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट ये मान सकते हैं कि ऐसे बहुत छोटे छोटे, जो लोग को लगे कि बहुत छोटी जानकारी है, बट रिसर्च के लिए बहुत बड़ी जानकारी हो सकती है। राखी गढ़ी में लोग कैसे रहते थे, उनका सिस्टम कैसा था, ड्रेनेज सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, उनका डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम कैसा था, उनका सिटी का लिमिट कितना बड़ा था, फोर्टिफिकेशन था नहीं था, बैस्टियंस थे, डबल फोर्टिफिकेशन था, सिंगल फोर्टिफिकेशन था, ये सब जानकारी अभी जाननी जरूरी है। बैरियल अभी भी एक्सकवेट हो रहे हैं, बट उसके अलावा भी हमें ये आगे इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है कि जो जहाँ बैरियल्स हो रहे हैं, माउंट सेवन जिसको बोला जाता है, जहाँ मचो हरप्पन बैरियल्स मिलते हैं, वहाँ पे जो अर्ली एविडेंस मिले हैं अर्ली हरप्पन के, ये दर्शाता है कि जो अर्ली हरप्पन लेवल जो है वो काफी बड़ा रहा है। तो अर्लीस्ट एविडेंस जो साइट पे मिलता है उसका स्केल जानना, वहां से लेके मचौर तक कैसे सेटलमेंट चेंज हुआ है, कैसे सिटी डेवलप हुई है, ये सब बातें जो है, ये कहानी जो है अभी भी बाकी है।
1: उनका ये भी मानना है कि जैसे जैसे तकनीक उन्नत होगी इस पुरातात्विक स्थल को और अच्छे से समझा व जाना जाएगा।
2: जीपीआर, मैग्नेटोमेट्री ऑलरेडी प्रोफेसर वसंत शिंदे ने किया है, बट उसके अलावा रिमोट सेंसिंग है, टेस्ट पिट्स ले सकते हैं, फील्ड वॉकिंग है, कई ऐसी टेक्निक्स हैं आगे फ्यूचर में आएंगी जो हमें ये एविडेंस बहुत क्लियरली बताएंगी। बट एज ऑफ नाउ अभी हम रिमोट सेंसिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर हम उस पे काफी मेहनत करें, और सैटेलाइट इमेजरी और स्पेशल एविडेंस के हिसाब से हम जान सकते हैं कि इंडिकेशन लगा सकते हैं साइट के बारे में।
3: राखी गढ़ी की मिट्टी में दबी हर पक्की ईंट एक गाथा सुनाती है, हर मन का एक हुनरमंद हाथ की कहानी कहता है, और हर अवशेष उस महान मानव जीवन का साक्ष्य है।
1: सवाल बस इतना है, क्या हम इतिहास की इस पुकार को सुनने के लिए तैयार हैं?
4: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुना रूपक, राखी गढ़ी मिट्टी के नीचे सोया महानगर। आलेख डॉक्टर अप्पू सहारन का था, वाचन स्वर उषा मलिक व पंकज भारद्वाज का था। कार्यक्रम का संपादन दिलीप अहिरवार ने किया, प्रस्तुतकर्ता विनय कुमार। यह कार्यक्रम

0: ये आकाशवाणी है। रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के आज के प्रसारण में अब हम आपके लिए श्री एनआर प्रशांत का कर्नाटक शास्त्रीय गायन प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट ब्रॉडकास्ट ऑफ रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी विल नाउ ब्रिंग यू द कर्नाटक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय श्री एनआर प्रशांत।
0: श्री एनआर प्रशांत कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के एक प्रतिष्ठित गायक हैं, जो संगीत क्षेत्र में अपने अभिनव और शोध आधारित असाधारण योगदान के लिए जाने जाते हैं। श्री एनआर प्रशांत की संगीतमय यात्रा का शुभारंभ बेंगलुरु में विद्वान आरके पद्मनाभ के मार्गदर्शन में हुआ। श्री तिट्टे कृष्णयंगार जैसी महान विभूतियों से प्रेरित होकर आपने विदुषी नीला रामगोपाल के सानिध्य में अपना गहन प्रशिक्षण जारी रखा। तत्पश्चात प्रोफेसर आर विश्वेश्वरन जी के आदरणीय मार्गदर्शन में आपने कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की सूक्ष्म बारीकियों की गहरी समझ प्राप्त की। आपने मैसूर विश्वविद्यालय से इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की थी। आप वर्तमान में आकाशवाणी के प्रतिष्ठित ए ग्रेड कलाकार हैं। आपकी संगीतमय यात्रा की एक विशेष और अद्वितीय उपलब्धि एक राग संगीत सभाओं का सफलतापूर्वक संचालन करना है। वर्ष 2001 में आपको सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी में वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में आमंत्रित एवं नियुक्त किया गया था।
1: श्री एनआर प्रशांत इज अ डिस्टिंग्विश्ड वोकलिस्ट इन कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक रेनाउंड फॉर हिज innovative and research-oriented exceptional contributions to the field. Shri N.R. Prashant's musical journey commenced in Bengaluru under the guidance of Vidwan R.K. Padmanabha. Inspired by stalwarts like Shri Tite Krishna Iyengar, he pursued his advanced training under the tutelage of Vidushi Neela Ramgopal. Subsequently, under the revered mentorship of Professor R. Vishweshwaran, he gained a deep understanding of the subtle nuances of Carnatic classical music. He earned a degree in engineering in instrumentation technology from the University of Mysore. He is currently a prestigious A-grade artist of Akashvani. A distinct and unique highlight of his musical journey is the successful presentation of the Ekaraga concert series. In the year 2001, he was invited and appointed as a senior faculty member at the Singapore Indian Fine Arts Society.
0: आज के कार्यक्रम में आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर सीवी श्रुति, मृदंगम पर ये राधेश और घटम पर शरद कौशिक।
1: In tonight's broadcast, he is accompanied on the violin by CV Shruti, on the mridangam by A Radhesh and on the ghatam by Sharad Kaushik.
0: श्री एनआर प्रशांत अपने कार्यक्रम का आरंभ स्वाति तिरुनाल की रचना से कर रहे हैं नरसिंह मामवा, जो राग आरभी खंड चापताल में निबद्ध हैं।
1: श्री एनआर प्रशांत बिगिन्स हिज कॉन्सर्ट विद द कंपोजिशन ऑफ स्वाति तिरुनाल नरसिंह मामवा इन राग आरभी सेट टू खंड चापताल।

0: लीजिए, अब आप सुनिए मैसूर वासुदेवाचार्य की कृति देवी रमे मामवाब्धि तनये, जो राग वसंत तथा आदिताल में निबद्ध हैं।
1: यू विल नाउ लिसन टू अ कंपोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार्य, देवी रमे मामवाब्धि तनये, इंद्र राग वसंता, सेट टू आदिताल।

0: श्री एनआर प्रशांत अपने गायन को जारी रखते हुए अब प्रस्तुत कर रहे हैं रामनाथपुरम श्रीनिवास अय्यंगार की एक रचना परम पावन रामा, जो राग पूर्वी कल्याणी आदि ताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वोकल रिसाइटल, श्री एनआर प्रशांत विल नाउ प्रेजेंट अ कंपोजिशन ऑफ रामनाथपुरम श्रीनिवास अय्यंगार परम पावन रामा इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू आदिताल।

0: ये था तनी आवर्तनम, जिसे मृदंगम पर ए राधेश, घटम पर शरद कौशिक ने प्रस्तुत किया।
1: That was Tani Avartanam, played on the mridangam by A. Radhesh and on the ghatam by Sharad Kaushik.
0: श्री एन आर प्रशांत अपने गायन का समापन रामनाथपुरम श्रीनिवास अयंगार की एक तिल्लाना से कर रहे हैं, जो राग पूर्णचंद्रिका आदि ताल में निबद्ध हैं।
1: श्री एन आर प्रशांत concludes his vocal recital with a tillana of Ramanathapuram Srinivasa Iyengar in the rag Purnachandrika set to Aditaal.

0: इसके साथ ही रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में श्री एनआर प्रशांत का कर्नाटक शास्त्रीय गायन अब संपन्न होता है। संगत करने वाले थे वायलिन पर सी वी श्रुति, मृदंगम पर ए राधेश और घटम पर शरद कौशिक।
1: विद दैट वी कंक्लूड द कर्नाटिक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय श्री एनआर प्रशांत इन द ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। He was accompanied on the violin by C.V. Shruti, on the mridangam by A. Radhesh, and on the ghatam by Sharad Kaushik.
0: इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी के मैसूर केंद्र पर की गई और इसे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: This program was recorded at the studios of Akashvani Mysuru, and the broadcast came to you from Akashvani Delhi.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 800 किलो।

0: जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की दो टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉ. सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता पहचानने की जरूरत है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा है कि उनके एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमरीकी विमान वाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 8 हवाई अड्डों पर परिचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। इससे 1.5 लाख से अधिक यात्री फंस गए हैं। परिवहन मंत्री डूडी पूर्वा गांधी ने बताया कि अब तक 712 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। जकार्ता के सोकार्नो हट्टा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने आज सुबह अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी से निकली राख के हवाई क्षेत्र में पाए जाने के बाद सबसे पहले परिचालन निलंबित किया। चीन के शेंझेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी के चीन के हे जी टिंग और रेयान जियांग यू को हराया। इस वर्ष यह उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर चौथा खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उपविजेता रही थी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Aditi Lumba. A multi-story building housing a student paying guest accommodation collapsed.